0: Let's begin with our top story, and that's the investigation into Tushar's death that's entered a crucial phase after a special forensic team from the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, has completed its second autopsy in Bhopal and collected fresh evidence linked to the case. Do remember that the body had started to decompose because the second autopsy has been conducted 12 days on after Tushar was found dead. We have learned that the second autopsy was done in the presence of the family. The report is likely to be out in a matter of 2 to 3 days. The AIIMS experts have also visited the residence of the husband, Samarth Singh, to closely examine the suspected crime scene as investigators intensified efforts to reconstruct the sequence of events leading up to the death of Tushar Sharma. Sources indicate that Samarth could be taken to the location for that detailed questioning and possible crime scene recreation as well.
1: Yoha Benio, or Bansoli by Yoha, Sabin Mille, Bilia Perdivoga, Sabina Voga, Meko, Bonda Nivoga, Ki Usko Niagiga, or Jerry, a Tisha, it is there to be something like a case, a Toluke Perse, ye quote for example, Sakperilla, Mazir Sakpore, or never snap at the Busso Kubara da Ginga. Ye सुप्रीम कोर्ट ने और सीबीआई ने वो संज्ञान लिया है ये पतन की बहुत ही अच्छा लग रहा है हम सभी को ये कुंडी बड़ी ली.
0: Let's also get you details as far as the case is concerned. Now, the Supreme Court is set to be hearing the death case today with serious questions being raised over the handling as far as the investigation is concerned and the alleged institutional biases in the probe. The court is expected to examine possible procedural lapses as security intensifies on Tushar's mother-in-law. Now, the Madhya Pradesh government has opposed her bail and supported the police plea seeking cancellation of the relief that has been granted to her, citing allegations of tampering with evidence and non-cooperation during the investigation. With the case drawing nationwide attention, the court's observations and decision on her bail are likely to become a crucial turning point in the ongoing investigation.
2: तो देखा ना पुलिस यहाँ आई थी
3: जी जी
2: कार्रवाई करने के लिए
4: और साथ में जो है एम्स के लोग भी आए थे तो हम यहाँ उनके साथ सहयोग नहीं करते तो कल आप बोलते बिल कैंसिल कर देंगे आपकी
5: मैटर सब जुडिस है इससे अधिक कुछ नहीं बोल सकते.
0: And switching tracks now, after 113 years of power, privilege and social status, is the centre that sent an eviction notice to the famous Delhi Gymkhana Club, which has sparked a political showdown. The government notice stated that the 27 acres of land of the Delhi Gymkhana Club will be taken over by the centre. They've given a deadline of the 5th of next month. Literally, the clock is ticking. It has also stated that the Gymkhana Club lies in a highly sensitive and a strategic area of the national capital and is now needed for strengthening defence infrastructure. The club authority has written to the centre seeking a clarity over the relocation costs, the alternate plans as far as the alternate plot is concerned, and the future of the 500 employees of the club. The centre's eviction notice has sparked a political war of words, with Congress claiming that the BJP is trying to wipe out historic symbols, while the RJD has stated that there might be involvement of big personalities behind this very move.
6: A late club hai. और गवर्नमेंट को अपना सोचना पड़ेगा कि ये क्लब को चालू रखना है. सीनियर सिटीजन्स जितने भी यहाँ पे इतने सालों से मेंबर हैं उन सब के लिए बड़ा शारीरिक और बीच तकलीफ बड़ी होगी तो इसलिए होना नहीं चाहिए. यहाँ लेबर है, इतने वर्कर्स हैं, इतने एम्प्लॉयज हैं, सबको अपरूट करना बहुत गलत बात है. उनकी फैमिलीज हैं, उनके परिवार हैं, तो गवर्नमेंट को यही चाहिए कि यहाँ कोई ऐसा सोल्यूशन निकाले जो कि क्लब बना रहे.
7: सही खबर हमारे स्टाफ में लगी तो सारा स्टाफ मायूस में है, शोक में है कि हमारा फैमिली का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा. हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते, भारत सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप लोग इतनी जल्दी इतना हम 6000 आदमी पे 6000 हमारे 600 एम्प्लॉय उसके फैमिली लगा करके 6500 परिवार है, क्या होगा उनका.
8: अच्छा है यार, ये तो एलीट क्लास के लोग हैं, इनके बारे में मुझे गरीब आदमियों की बात करिए मुझसे, ये एलीट क्लास के लोग हैं. इनसे क्या होना है, जिमखाना से क्या हो रहा है, जिमखाना में क्या है, जिमखाना भाई, ये एलीट क्लास लोगों के चोचले हैं, इसके अलावा कुछ है इसके अंदर.
9: सरकार को अगर लगता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये होना चाहिए था तो जाहिर है इसके लिए कोई अध्ययन भी आया होगा, कोई स्टडी कमीशन की गई होगी, कोई कुछ इस तरह की कोशिश हुई होगी, उससे चीजें पारदर्शी दिखती हैं। क्योंकि ओपेसिटी के आधार पर अगर आप कुछ करते हैं, ना मैं उस क्लब का मेंबर हूं ना मेरी ख्वाहिश है, लेकिन मैं मानता हूं कि एक समेकित दृष्टिकोण बेहद आवश्यक है और उसी के आधार पर कोई भी निर्णय होना चाहिए, किसी जमीन को लेने का या ना लेने का। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि इस तरह की जब कोई चीज टेक ओवर की जाती

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
3: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
4: So many attacks.
3: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.

0: सर हमारे 600 एम्प्लॉय उसके फैमिली लगा करके 6,500 परिवार है, क्या होगा उनका।
1: अच्छा है यार, ये तो एलीट क्लास के लोग हैं, इनके बारे में मुझे, गरीब आदमियों की बात करिए मुझसे, ये एलीट क्लास के लोग हैं, इनसे क्या होना है, जिमखाना से क्या हो रहा है, जिमखाना में क्या है, जिमखाना भाई, ये एलीट क्लास लोगों के चोचले हैं, इसके अलावा कुछ है इसके अंदर।
2: सरकार को अगर लगता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये होना चाहिए था, तो जाहिर है इसके लिए कोई अध्ययन भी आया होगा, कोई स्टडी कमीशन की गई होगी, कोई कुछ इस तरह की कोशिश हुई होगी, उससे चीजें पारदर्शी दिखती हैं। क्योंकि ओपेसिटी के आधार पर अगर आप कुछ करते हैं, ना मैं उस क्लब का मेंबर हूं ना मेरी ख्वाहिश है, लेकिन मैं मानता हूं कि एक समेकित दृष्टिकोण बेहद आवश्यक है और उसी के आधार पर कोई भी निर्णय होना चाहिए, किसी जमीन को लेने का या ना लेने का। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि इस तरह की जब कोई चीज टेक ओवर की जाती है तो उसके पीछे किसी न किसी बहुत बड़े इजारेदार की नजर भी होती है।
3: And switching tracks now to the political heat that's rising over the dam project. It's the Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar who's saying that the project report is ready and land identification is underway, asserting that Tamil Nadu has no right to object, and that remarks have triggered a sharp reaction from Tamil Nadu's leaders, with DMK's K.N. Nehru calling the project a betrayal of Tamil Nadu and accusing the Congress of arrogance. Meanwhile, the AIADMK has turned up the pressure on the newly elected Chief Minister Vijay, questioning whether he can take on the Karnataka Congress, as concerns are growing over the impact of the project on the Delta districts of the state of Tamil Nadu. And with that, we're slipping into a very short break. Back with a whole lot more on the other side. Just stay with us.

0: After 113 years of power and privilege and social status, it's the centre that sent an eviction notice to Delhi's Gymkhana Club, which is political showdown. The government notice states that 27 acres of that prestigious club of Delhi, the landmark club of Delhi, the Gymkhana, will be taken over by the centre. A deadline has been given of the 5th of June. The clock is literally ticking. It is also stated that Gymkhana Club lies in a highly sensitive and strategic area of the national capital and is now needed for strengthening defence infrastructure. The club authority has written to the centre seeking a clarity over relocation costs and also the alternative plot and the future of the 500 employees of the club. The centre's eviction notice has sparked a political war of words, with the Congress claiming that the BJP is trying to wipe out historic symbols, while the RJD has stated that there might be an involvement of big personalities eyeing the area that spreads over 27 acres, includes 26 tennis courts, 3 squash courts, baddie courts, billiards room, and a covered heated swimming pool and 43 resident cottages as well.
1: हमारे को तो इस बारे संदर्भ में किसी चीज से कोई हमारे को बताया नहीं गया कि क्या होना है इसमें या क्या हुआ. हम सचिव महोदय से के पास भी गए थे कि भाई क्या नोटिस, उन्होंने कहा नोटिस आया उसमें 5 बजे 5:30 बजे तक मीटिंग होगी, उसमें क्या निष्कर्ष निकला इसके बारे में भी हमें कोई पता नहीं है. परंतु जैसे ही खबर हमारे स्टाफ में लगी तो सारा स्टाफ मायूस में है, शोक में है कि हमारा फैमिली का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा. हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, भारत सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप लोग इतनी जल्दी इतना हम 6000 आदमी पे 6000 हमारे 600 एम्प्लॉय उसके फैमिली लगा करके 6500 परिवार है, क्या होगा उनका.
2: हम लोगों को अचानक कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं बताया इन लोगों ने. अचानक आके हमसे कहा जी क्लब 5 जून को कोर्ट का ऑर्डर है, क्लब बंद हो रहा. तो बहुत धक्का लग रहा. हम यहाँ पे नौकरी करने कम से कम 35-40 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमें कुछ बताया नहीं जा रहा, कुछ नहीं गया. अचानक ऐसे भेजा गया, कल अचानक हमें कल पता लगा. अब सब परेशान है. कुछ लोग यहाँ 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, कुछ 20 साल से, हमने खुद 36-37 साल हो गए हमें जॉब करते हुए. हम कहाँ जाएंगे, बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे. अचानक हमारा कह रहे हैं, हमें पहले कोई नोटिस दिया था, पहले बताया था, हमें कुछ नहीं पता. अचानक से खबर देनी अचानक कोर्ट का ऑर्डर है, हमें कोई कुछ नहीं बताया हम लोगों को. अब हम लोग कहाँ जाएंगे.
3: हाउसकीपिंग का काम करती हूँ. मेरी उम्र देख रहे हो आप, मेरी उम्र देख रहे हो, कैसा हो गई. काम करते 25-30 सालों से काम करते करते ये हो गया. अब ये क्लब चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे. हम तो भूखे मर जाएंगे. हमारे बच्चे वैसे ही रोड पे आ रखे, हमारी झुग्गियां वैसे ही टूट रही है. 26 तारीख को आदेश मिला हुआ है हमें तोड़ने का. ये रोजी जरा सा हमारा घर चलता, हमारी रोजी रोटी चल रही थी, इससे हमारा ये भी छीनने जा रहा है. तो हम कहाँ जाएंगे. जहाँ क्लब जाएगा वहाँ हम जाएंगे. क्लब मिलना चाहिए. कहाँ क्लब को जगह देंगे वहाँ हम भी जाएंगे.
4: अच्छा है यार, ये तो एलीट क्लास के लोग हैं. इनके बारे में मुझे, गरीब आदमियों की बात करिए मुझसे, ये एलीट क्लास के लोग हैं. इनसे क्या होना है, जिमखाना से क्या हो रहा है. जिमखाना में क्या है, जिमखाना भाई. ये एलीट क्लास लोगों के चौचले हैं, इसके अलावा कुछ है इसके अंदर.
5: सरकार को अगर लगता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये होना चाहिए था, तो जाहिर है इसके लिए कोई अध्ययन भी आया होगा, कोई स्टडी कमीशन की गई होगी, कुछ इस तरह की कोशिश हुई होगी. उससे चीजें पारदर्शी दिखती हैं, क्योंकि ओपेसिटी के आधार पर अगर आप कुछ करते हैं. ना मैं उस क्लब का मेंबर हूं, ना मेरी ख्वाहिश है, लेकिन मैं मानता हूं कि एक

0: against the dollar. And UBD there saying the BJP only knows how to run social media, but not the government. Let's listen into what Aditya Thakre of the UBD has to say.
1: सत्य परिस्थिति ये है कि जो वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट हम जिसे कहते हैं वो वॉर अभी तो रुका हुआ है, टेंशन बिल्कुल जारी है, लेकिन वॉर भी रुका हुआ थमा हुआ है। इसी परिस्थिति में अगर आप देखिए तो हमारी करेंसी रुपया ये एशिया की सबसे करेंसी है। परिस्थिति ये भी है कि पिछले साल के बाद पाकिस्तान के रुपए के खिलाफ भी जो करेंसी है 12% से घटी हुई है। तो बात यही है कि ये सिर्फ एक वॉर के कारण से नहीं है, आज रुपए घटे जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, एलपीजी का शॉर्टेज हम देख रहे हैं, और ये सारी बातें सिर्फ एक वॉर के कारण। पिछले 12 साल से एक ऐसी सरकार हमारे भारत में रहती है जिसको सरकार नहीं चला जाती, सोशल मीडिया चला जाता है।

0: six tennis courts, three squash courts. Then there are billiards room, there's a covered heated swimming pool, and of course, 43 cottages.
1: हमारे को तो इस बारे संदर्भ में किसी चीज से कोई हमारे को बताया नहीं गया कि क्या होना है इसमें या क्या हुआ. हम सचिव महोदय से के पास भी गए थे कि भाई क्या नोटिस, उन्होंने कहा नोटिस आया उस पर 5 बजे 5:30 बजे तक मीटिंग होगी, उसमें क्या निष्कर्ष निकला इसके बारे में भी हमें कोई पता नहीं है. परंतु जैसे ही खबर हमारे स्टाफ में लगी तो सारा स्टाफ मायूस में है, शोक में है कि हमारा फैमिली का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा. हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, भारत सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप लोग इतनी जल्दी इतना हम 6000 आदमी पे 6000 हमारे 600 एम्प्लॉयज उसके फैमिली लगा करके 6000 परिवार है, क्या होगा उनका
2: मामला. हम लोगों को अचानक कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं बताया इन लोगों ने. अचानक आके हमसे कहा जी कल 5 जून को कोर्ट का ऑर्डर है, कल बंद हो रहा. हमारे तो बहुत धक्का लग रहा है. यहाँ पे नौकरी करने के, हमसे 35-40 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमें कुछ बताया नहीं जा रहा, कुछ नहीं. अचानक ऐसे भेजा गया, कल अचानक हमें कल पता लगा. अब सब परेशान है. कुछ लोग यहाँ 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, कुछ 20 साल से. हमने खुद 36-37 साल हो गए हमें जॉब करते हुए. हम कहाँ जाएंगे, बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे अचानक. हमारा कह नहीं, हमें पहले कोई नोटिस दिया था, पहले बताया था, हमें कुछ नहीं पता. अचानक से खबर फैलनी, खबर देनी, अचानक कोर्ट का ऑर्डर है, हमें कोई कुछ नहीं बताया हम लोगों को. अब हम लोग कहाँ जाएंगे.
3: हॉस्पिटल का काम करती हूँ. मेरी उम्र देख रहे हो आप, मेरी उम्र देख रहे हो, कैसा हो गई काम करते. 25-30 सालों से काम करते करते ये हो गया. अब ये कल चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे. हम तो भूखे मर जाएंगे. हमारे बच्चे वैसे ही रोड पे आ रखे, हमारी झुग्गियां वैसे ही टूट रही है. 26 तारीख को आदेश मिला हुआ हमें तोड़ने का. ये रोजी ये रसा हमारा घर चल रहा था, हमारी रोजी रोटी चल रही थी, इससे हमारा ये भी छीनने जा रहा है. तो हम कहाँ जाएंगे. जहाँ क्लब जाएगा वहाँ हम जाएंगे. क्लब मिलना चाहिए. कहाँ क्लब को जगह देंगे वहाँ हम भी जाएंगे.
4: अच्छा है यार, ये तो एलीट क्लास के लोग हैं. इनके बारे में मुझे, गरीब आदमियों की बात करिए मुझसे, ये एलीट क्लास के लोग हैं. इनसे क्या होना है, जिमखाना से क्या हो रहा है. जिमखाना में क्या है, जिमखाना भाई, ये एलीट क्लास लोगों के चोचले हैं. इसके अलावा कुछ है इसके अंदर.
0: शिफ्टिंग फोकस नाउ टू त्वषा शर्मा'स डेथ केस, वेयर द सुप्रीम कोर्ट इज सेट टू हियर the death case today, with serious questions being raised over the handling of the investigation and alleged institutional bias in the probe. The court is expected to examine possible procedural lapses as scrutiny intensifies on Twisha's mother-in-law, that is Giribala Singh. While Madhya Pradesh government has opposed her bail and supported the police plea seeking cancellation of the relief granted to her, citing allegations of tampering with evidence and non-cooperation during the investigation, with the case now drawing nationwide attention, the court's observation and the decision on the mother-in-law's bail are likely to be a very crucial turning point in the ongoing probe. I'm going to play out some important reactions for you, and we've got some details also lined up that have been gotten by my colleague Tejshree Purandare as well. Take a look.
5: तो देखा ना, पुलिस यहाँ आई थी
6: जी,
5: कार्रवाई करने के लिए
6: जी.
5: और साथ में जो है एम्स के लोग भी आए थे
6: जी.
5: तो हम यहाँ उनके साथ सहयोग नहीं करते तो कल आप बोलते बिल कैंसिल कर देंगे आप. मैटर सब जुडिस है, इससे अधिक कुछ नहीं बोल सकते.
7: देयर आर लॉट ऑफ स्वीटेस्ट मेमोरी एज अ डैड यू मस्ट बी हैविंग, बट व्हाट इज द वन दैट यू विल ऑलवेज हैव क्लोज टू योर हार्ट.
8: इट वाज वेरी केयरिंग, वेरी केयरिंग. और वो जब भी हम साथ में रहते थे तो रात का उसकी एक हैबिट थी कि जब वो सोने जाती थी तो मेरा माथा चूम के, मम्मी का माथा चूम के हक करके सोने जाती थी. वो हमें उसकी ऐसी स्वीटेस्ट मेमोरी है कि जो हमें हमेशा जो है याद आती रहेगी उसकी.
7: मेरी बहन मतलब मुझे हमेशा करेक्ट करती थी. वो मेरी छोटी बहन थी बट मेरे को हमेशा बड़ी बहन की तरह उसने हमेशा गाइड किया है. मेरी हर जो मेरी मेरे अंदर मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्ट किया है उसने.
9: ईशा वॉज द ब्राइटेस्ट गर्ल इन आवर फैमिली. उसका एक ऑरा था अपना, जहाँ वो खड़ी होती थी ना एक ऑरा क्रिएट हो जाता था. पॉजिटिव थी, मतलब मैं, मेरी दो बेटियाँ हैं, मैं अपनी बड़ी बेटी को बोलता था कि त्विषा मासी से कुछ सीखना तेरे को.
10: जब हमारा रिश्ता जुड़ा था इनके साथ, हमने त्विषा को मिले नहीं थे, और जब एंगेजमेंट में मिले तो शी वॉज लाइक यू नो, मैंने कहा यार वो बच्ची के जब एंगेजमेंट में उनको पायल पहनाई जाती है, उस बच्ची ने मेरी बेटी के मतलब अपनी भाभी के पैर चूमे, वो चीज़ें हमें इतनी छू

0: गई। हम बता नहीं सकते वो बच्ची ने किस तरह से कितना अपने भाभी को बेटी जैसा लिया। और मुझे अच्छे से याद है, मुझे एक बार फ़ोन पे भी बोला था एंगेजमेंट के बाद कि माँ आपने चिंता नहीं करनी है, मेरी बेटी है वो, आपकी बेटी अब नहीं है वो।
1: All right, on that note, I'm slipping into a very short break. We come back with more news and updates on the other side. Stay with us.

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: Let's begin with our top story, and politics has erupted over that fuel price hike. We're talking about the fourth hike in Delhi, and

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्गन मसाला।
5: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
6: So many attacks.
5: The chaos and cries of disaster zones. The fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
6: It's incredible.
5: He has seen history break. Live. Unfiltered.

0: Amid fluctuation in global energy market, in less than 2 weeks, there had been fourth time hike in petrol and diesel price. First time there was a hike on May 15th when 3 rupees increased on both petrol and diesel prices. Then second hike was on May 19th. Third hike was on 23rd of May. And now the fourth hike, or less, more than 2 rupees, there has been increase in price. This is definitely going to give a big blow to common man. It's going to put hole in their pocket and going to make an impact on their budget. Let me talk to the people here and try to find out what is their reaction, how they are seeing it, that increase in the petrol prices. कैसे देखते हैं जो ये एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, दिस इंक्रीज इन पेट्रोल?
1: ये सारा असर जो बाहर जो मोल भाव चल रहा है ना अमेरिका और उसका इराक का, उसी वजह से ये ज़्यादा असर पड़ रहा है। हमें तो पहले ही पता था पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार थोड़ा झटका दे रही है, लेकिन धीरे धीरे दे रही है।
0: तो कितना असर पड़ रहा है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में?
1: असर तो पड़ रहा है, अब पेट्रोल डीजल बढ़ेंगे तो किराए भी बढ़ेंगे गाड़ियों के, और आम पब्लिक को सफर करना पड़ेगा।
0: जो क्या ऐसा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे? प्रधानमंत्री जी ने भी जैसे सजेस्ट किया था बहुत सारे मेजर्स,
1: उसका असर तो हुआ है। खुद भी लीडर अपना वो कर रहे हैं, गाड़ियों से सफर कर रहे हैं, उसका असर तो हुआ है, लेकिन फिर भी कितना ही लोग वो करेंगे, जिसको अपनी गाड़ी लेके जाना है उसको अपनी गाड़ी लेके ही जाना है।
2: Past 10 days, it's fourth time today the petrol and diesel prices have been hiked. In Jaipur today, 2 rupees 82 paise per litre the petrol price and 2 rupees 72 paise per litre the diesel prices have been hiked. Mahendra ji, petrol diesel ke price aaj dobara badhe hain, 15 mai se ab tak 7 rupees ke se zyada petrol ka price badh gaya hai, kaise aapke budget pe asar dal raha hai?
3: Asar to dal raha hai na, पहले 104 तरफ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 113 हो गया।
4: ये तो तकलीफ ही है आम लोगों को, बड़ी समस्या हो रही है। तेल के दाम जैसे पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, रोजाना बढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े, तो दिक्कत तो आनी है सर, आगे सुनने में आ रहा है आगे और ज़्यादा भी दिक्कत आ सकती है।
2: पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े आपके जीवन पर कैसे असर डाल रहा है?
5: हम रोजाना की उसमें बहुत दिक्कत आ रही सर हमारे को, एक तो टाइम से नहीं मिलता, मिलता है तो वो देते नहीं है, और महंगाई बहुत बढ़ रही है।
2: अच्छा, महंगाई बढ़ी है तो आपके तो अर्निंग पे भी
5: बहुत जबरदस्त उस पर वो पड़ा है, आज कस्टमर इतना पैसा देते नहीं, जो पहले देते थे वो अब नहीं देते।
6: Now the fuel price hike has triggered a massive political showdown with the opposition slamming the center. Hitting out at the center, Congress questioned the government's policies and argued that the government only cares about businesses and not common people. In fact, DMK and UPT also stated that the BJP is not able to run the government and are being dishonest with the common people. In fact, BJP though has defended the move and said that the situation is beyond their control, and in fact some price hike is inevitable simply because of the global situation. Consequently, only a minor increase has actually been implemented. Listen in to both sides of the political argument that's coming in on the fuel price hike.
7: Going to be closed when the crude oil is allowed to come in the Hermes way, why are you increasing? You have to justify giving, even if there is any problem, that must be absorbed by the government and people must be given welfare schemes. When people are not even digesting the second time increase, you have increased the third time. It means when there are no election, you don't mind increasing the any price to the people.
8: ये तो रुका हुआ है, सत्य परिस्थिति ये है कि जो वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट हम जैसे कहते हैं वो वॉर अभी तो रुका हुआ है, टेंशन बिल्कुल जारी है, लेकिन वॉर तो रुका हुआ है, थमा हुआ है। इसी परिस्थिति में अगर आप देखिए तो हमारी करेंसी रुपया ये एशिया की सबसे करेंसी है। ये भी है कि पिछले साल के बाद पाकिस्तान के रुपए के खिलाफ भी अपनी जो करेंसी है 12% से घटी हुई है। तो बात यही है कि ये सिर्फ एक और की कारण से नहीं है, आज रुपए घटे जा रहे हैं, पेट्रोल दाम बढ़ते जा रहे हैं, एलपीजी का शॉर्टेज हम देख रहे हैं, और ये सारी बातें सिर्फ एक वॉर के कारण पिछले 12 साल से एक ऐसी रहती है जिसको सरकार भी चला जाती है, सोशल मीडिया चला जाता
9: है। सरकार देश के लोगों को रोज तिल तिल कर मार रही है, एक झटके में नहीं खत्म कर रही, तिल तिल करके मार रहे हैं। किसी दिन एक रुपया तेल का दाम बढ़ जाता है, किसी दिन 2 रुपए बढ़ जाता है, किसी दिन 3 रुपए बढ़ जाता है। पिछले 10 दिनों के अंदर 7.5 रुपए पेट्रोल और डीजल का दाम देश के अंदर बढ़ चुका है। देश का कोई शहर कोई राज्य नहीं बचा जहां 100 रुपए से कम पेट्रोल हो, 100 रुपए से ज्यादा है हर जगह पे। इसका मतलब जिन लोगों ने मोदी जी को या बीजेपी को प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पे कभी भी वोट दिया है, उन सब को मोदी जी महंगाई बढ़ा के बदला चुका रहे।
10: It's very, very unfair. We don't know. I think we are looking like at a bottomless pit. We don't know how much it will raise. Probably the government should give clarity. This is not on market conditions because the crude price has come down. But the petrol prices here are going up. What is the government trying to do? Let them be upfront and inform the people of this country how much should we expect, how much until it will go. Will the petrol prices ever come down? Because there are no elections around until Uttar Pradesh elections in 2027. So what is the government? I think they should take the people into confidence, inform the country what are they planning to do. These kind of knee-jerk actions are going to affect the common man and the economy.
11: दुनिया की तरफ नजर बुलाई एकदम, पिछले 3-4 साल से क्या चल रहा है। कुछ देशों में तो पेट्रोल डीजल मिलता ही नहीं है, रात रात भर लोग लाइन में खड़े रहते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑयल कंपनियों को नुकसान होते हुए भी लोगों को राहत दी थी, लेकिन आज इस स्थिति में पहुंच गया कि कुछ ना कुछ दाम बढ़ाना पड़ेगा। उतना ही मिनिमम बढ़ाया गया है, परिस्थिति अपने हाथ में नहीं है। पेट्रोल गैस डीजल हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए दुनिया का साथ तालमेल रख के हम लोग चलना पड़ रहा है।
6: All right, with that, we wrap things up on this edition of the news. Thanks so much for watching.

0: BJP only knows how to run social media, but not the government. Let's listen into what Aditya Thakre of the UBT has to say.
1: सत्य परिस्थिति ये है कि जो वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट हम जैसे कहते हैं वो वॉर अभी तो रुका हुआ है, टेंशन बिल्कुल जारी है, लेकिन वॉर भी रुका हुआ थमा हुआ है। इसी परिस्थिति में अगर आप देखिए तो हमारी करेंसी रुपया ये एशिया की सबसे महत्वपूर्ण करेंसी है। परिस्थिति ये भी है कि पिछले साल के बाद पाकिस्तान के रुपए के खिलाफ भी अपनी जो करेंसी है 12% से घटी हुई है। तो बात यही है कि ये सिर्फ एक वॉर की कारण से नहीं है, आज रुपए घटे जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, एलपीजी का शॉर्टेज हम देख रहे हैं, और ये सारी बातें सिर्फ एक वॉर के कारण। पिछले 12 साल से एक ऐसी सरकार रहती है जिसको सरकार नहीं चला जाती, सोशल मीडिया चला जाती है।
0: Can run the social media but can't run the country is what we just heard from Aditya Thakre. Let's go across to my colleague Anushka Garg, who's joining us from a petrol pump here.

0: everybody there saying the BJP only knows how to run social media, but not the government. Let's listen into what Aditya Thakre of the UBT has to say.
1: सत्य परिस्थिति ये है कि जो वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट हम जिसे कहते हैं वो वॉर अभी तो रुका हुआ टेंशन बिल्कुल जारी है लेकिन वॉर भी रुका हुआ समा हुआ है। इसी परिस्थिति में अगर आप देखिए तो हमारी करेंसी रुपया ये एशिया की सबसे बड़ी करेंसी है।

0: नहीं है, रात रात भर लोग लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑयल कंपनियों को नुकसान होते हुए भी लोगों को राहत दी थी, लेकिन आज इस स्थिति में पहुंच गया कि कुछ ना कुछ दाम बढ़ाना पड़ेगा। उतना ही मिनिमम बढ़ाया गया है, परिस्थिति अपने हाथ में नहीं है, पेट्रोल गैस डीजल हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए दुनिया का साथ तालमेल रख के हम लोग चलना पड़ रहा है, परिस्थिति स्वाभाविक होगा तो पहले लोगों को ही राहत मिलेगा।
1: While the BJP is saying this was inevitable, they didn't have a choice in the matter, but it is the opposition questioning as to why did none of this happen during elections and why after the elections that have been concluded is the government increasing the rates time and again. With that, we're slipping into a short break. Back with a whole lot more. Stay with us.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: Let's begin with our top story and politics has erupted over that fuel price hike. We're talking about the fourth hike in Delhi and the opposition up in arms as far as this is against the center.

0: Everybody knows how to run social media, but not the government. Let's listen into what Aditya Thakre of the UBT has to say.
1: सत्य परिस्थिति ये है कि जो वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट हम जिसे कहते हैं वो वॉर अभी तो रुका हुआ है, टेंशन बिल्कुल जारी है, लेकिन वॉर भी रुका हुआ है, थमा हुआ है। इसी परिस्थिति में अगर आप देखिए तो हमारी करेंसी रुपया ये एशिया की सबसे महत्वपूर्ण करेंसी है। परिस्थिति ये भी है कि पिछले साल के बाद पाकिस्तान के रुपए के खिलाफ भी अपनी जो करेंसी है 12% से घटी हुई है। तो बात यही है कि ये सिर्फ एक वॉर के कारण से नहीं है, आज रुपए घटे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, एलपीजी का शॉर्टेज हम देख रहे हैं।

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: सबका राजा आकर मसाला।
3: नवनिधि शर्मा द फादर ऑफ त्विशा जॉइंस मी वन ऑन वन फॉर द फर्स्ट टाइम।
4: शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है। भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर, दे आर कैमेलियन पीपल।
5: अ ब्रदर मेजर हर्षित स्पीक्स आउट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन नेशनल टेलीविजन।
6: वी हैव बीन फाइटिंग नॉनस्टॉप, वी आर नॉट स्टॉपिंग अंटिल द जस्टिस इज सर्व्ड।
7: मिसिंग, वेयर इज योर सन? लेट मी आस्क यू दैट पॉइंटेड क्वेश्चन।
8: ही इज रेडी टू फेस ऑल द क्वेश्चंस बट ही हैज टू एग्जॉस्ट हिज लीगल रेमेडीज।
9: ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग इन, समर सिंह हैज फाइनली सरेंडर्ड। दीज आर फ्रेश विजुअल्स कमिंग ऑन योर स्क्रीन फर्स्ट ऑन एनडीटीवी।
10: क्या कह रहे हैं आप, सरेंडर करने आए हो या सरेंडर नहीं करने जा रहे हो?
9: NDTV is the only network in the country that is relentlessly chasing this case. Joining us live now for the first time is Nagendra Singh, senior advocate, appearing for Samarth Singh.
11: The girl has gone because of the pressure created by her own parents.
9: These are difficult circumstances, but the hard questions still need to be asked.
12: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
13: बदलता नहीं अब बढ़ता पंजाब। नवे पंजाब का नवा स्वैग लेकर आ रहा है एनडीटीवी नवा पंजाब समिट। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, विकास की हकीकत और नवा पंजाब के मिशन पर मंच साझा करेंगे सरकार के दिग्गज और पंजाबी कलाकार। देखिए मान मैजिक माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ सिर्फ एनडीटीवी पर।
14: हाई रेट चेक द ऑडियो, हाई रेट चेक द ऑडियो।
15: लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट।
16: ब्रेकिंग स्टोरी, वी आर जंपिंग स्ट्रेट इनटू इट।
17: वी गॉट अ पिक्चर ऑफ द लेटर। व्हाट इज इन योर लेटर? यू कैन नेवर प्रेडिक्ट व्हाट्स गोना हैपन इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स।
18: 21 डेज इन कश्मीर, अनफिल्टर्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स आई सॉ एंड ऑब्जर्व्ड ऑन द ग्राउंड।
19: वेरी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम द लाइन ऑफ कंट्रोल। देयर वर सम चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट लिम्ब्स इन द शेलिंग।
10: फॉर अ कंट्री that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
1: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
20: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
12: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
0: Let's begin with our top story, and politics has erupted over that fuel price hike. We're talking about the fourth hike in Delhi, and the opposition up in arms as far as this is against the centre, with

0: UBD there saying the BJP only knows how to run social media, but not the government. Let's listen into what Aditya Thakre of the UBD has to say.
1: सत्य परिस्थिति ये है कि जो वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट हम जिसे कहते हैं वो वॉर अभी तो रुका हुआ टेंशन बिल्कुल जारी है, लेकिन वॉर भी रुका हुआ थमा हुआ है। इसी परिस्थिति में अगर आप देखिए तो हमारी करेंसी रुपया ये एशिया की सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है। परिस्थिति ये भी है कि पिछले साल के बाद पाकिस्तान के रुपए के खिलाफ भी अपनी जो करेंसी है 12% से घटी हुई है। तो बात यही है कि ये सिर्फ एक वॉर के कारण से नहीं है, आज रुपए घटे जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल इसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, एलपीजी का शॉर्टेज हम देख रहे हैं, और ये सारी बातें सिर्फ एक वॉर के कारण। पिछले 12 साल से एक ऐसी सरकार रहती है जिसको सरकार नहीं चला जाती, सोशल मीडिया चला जाता है।
0: Can run the social media but can't run the country is what we just heard from Aditya Thakre. Let's go across to my colleague Anushka Garg, who's joining us from a petrol pump here in Noida. Anushka, in the last 10 days alone, the government has increased the petrol prices time and again, taking it up by over 7 rupees. Close to about 7 rupees 50 paise is the increase that we're seeing in just 10 days alone from the 15th of May.
2: Well, that's right. Within 2 weeks, this is the fourth time that the prices of petrol and diesel has been increased. We are showing you the visuals from a similar petrol pump from Noida Sector 51. We can clearly see that the price has been rise for petrol. It has become costlier by rupees 2.61 per litre and for diesel by rupees 2.71 per litre, making it the fourth hike in less than 2 weeks. Now, the latest increase is expected to add further pressure on the people and the budget. Also, the transportation costs, because most of the people who are working from Noida

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: situation in the Strait of Hormuz right yes. now and Iran, the last 48 hours have been tense. Is there a sense that strikes are imminent?
5: Iran can never have a nuclear weapon. And so the issues of enrichment and the highly enriched uranium have to be confronted. The straits cannot continue to be closed.
4: The import of American oil is important for India, particularly because of the situation.
5: India wants to diversify its energy. We want to diversify the countries we export to.
4: There is also an issue of visas for Indians. They have to come back to India for green cards now. Why has America taken this decision?
5: Well, it's not about India. It's about the whole world. Anytime you reform a system, there's going to be some disruptions. There's going to be some hiccups.
4: How did the meeting with the Prime Minister go? What did you discuss?
6: Relationship between the President, President Trump, and Prime Minister Modi. I think that always makes it easier to have these meetings because of the personal affinity they have to one another.
4: Thank you very much for
5: Thank you. Thanks.
4: Thank you.
5: Thank
4: very
5: you
4: much.
5: Very much.
7: Center has sent an eviction notice to the Delhi Gymkhana Club, which has sparked a huge political showdown. The government notice stated that the 27-acre land of the Delhi Gymkhana Club will be taken over by the center on the 5th of June. It has also stated that the Gymkhana Club lies in a very highly sensitive and strategic area of the national capital and is now needed for strengthening defense infrastructure. The club authority has written to center seeking a clarity over relocation costs, alternate plot and the future of the 500 employees of the club. Center's eviction notice has sparked a political war of words, with the Congress claiming that the BJP is trying to wipe out the historic symbols of the capital. While RJD has stated that there might be involvement of big personalities that are actually eyeing the area that spreads over 27 acres and includes 26 tennis courts, 3 squash courts, then there are billiards room, there's a covered heated swimming pool, and of course, 43 cottages.
8: हमारे को तो इस बारे संदर्भ में किसी चीज से कोई हमारे को बताया नहीं गया कि क्या होना है इसमें या क्या हुआ. हम सचिव महोदय से के पास भी गए थे कि भाई क्या नोटिस, उन्होंने कहा नोटिस आया उस पे 5 बजे 5:30 बजे तक मीटिंग होगी, उसमें क्या निष्कर्ष निकला इसके बारे में भी हमें कोई पता नहीं है. परंतु जैसे ही खबर हमारे स्टाफ में लगी तो सारा स्टाफ मायूस में है, शोक में है कि हमारा फैमिली का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा. हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, भारत सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप लोग इतनी जल्दी इतना हम 6000 आदमी पे 6000 हमारे 600 एम्प्लॉय उसके फैमिली लगा करके 6500 परिवार है, क्या होगा उनका
9: मामला. हम लोगों को अचानक कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं बताया इन लोगों ने. अचानक आके हमसे कहा जी कल 5 जून को कोर्ट का ऑर्डर है, कल बंद हो रहा. हमारे तो बहुत धक्का लग रहा है. यहाँ पे नौकरी करने के कम से कम 35-40 साल से नौकरी कर रहे हैं. हमें कुछ बताया नहीं जा रहा, कुछ नहीं गया. अचानक ऐसे भेजा गया, कल अचानक हमें कल पता लगा. अब सब परेशान है. कुछ लोग यहाँ 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, कुछ 20 साल से. हमने खुद 36-37 साल हो गए हमें जॉब करते हुए. हम कहाँ जाएंगे, बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे अचानक. हमारा क्या नहीं, हमें पहले कोई नोटिस दिया था, पहले बताया था, हमें कुछ नहीं पता. अचानक से खबर फैलनी, खबर देनी, अचानक कोर्ट का ऑर्डर.

0: strengthening defense infrastructure. The club authority has written to center seeking a clarity over relocation costs, alternate plot, and the future of the 500 employees of the club. Center's eviction notice has sparked a political war of words, with the Congress claiming that the BJP is trying to wipe out the historic symbols of the capital, while RJD has stated that there might be involvement of big personalities that are actually eyeing the area that spreads over 27 acres and includes 26 tennis courts, 3 squash courts, then there are billiards room, there's a covered heated swimming pool, and of course 43 cottages.
1: हमारे को तो इस बारे संदर्भ में किसी चीज से कोई हमारे को बताया नहीं गया कि क्या होना है इसमें या क्या हुआ. हम सचिव महोदय से के पास भी गए थे कि भाई क्या नोटिस, उन्होंने कहा नोटिस आया उसमें 5 बजे 5:30 बजे तक मीटिंग होगी, उसमें क्या निष्कर्ष निकला इसके बारे में भी हमें कोई पता नहीं है. परंतु जैसे ही खबर हमारे स्टाफ में लगी तो सारा स्टाफ मायूस में है, शोक में है कि हमारा फैमिली का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा. हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, भारत सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप लोग इतनी जल्दी इतना हम 6000 आदमी पे 6000 हमारे 600 एम्प्लॉय उसके फैमिली लगा करके 6000 परिवार है, क्या होगा उनका
2: मामला. हम लोगों को अचानक कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं बताया इन लोगों ने. अचानक आके हमसे कहा जी कल 5 जून को कोर्ट का ऑर्डर है, कल बंद हो रहा. तो बहुत धक्का लग रहा है. यहाँ पे नौकरी करने के कम से कम 35-40 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमें कुछ बताया नहीं जा रहा, कुछ नहीं गया. अचानक ऐसे भेजा गया, कल अचानक हमें कल पता लगा. अब सब परेशान है. कुछ लोग यहाँ 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, कुछ 20 साल से, हमने खुद 36-37 साल हो गए हमें जॉब करते हुए. हम कहाँ जाएंगे, बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे अचानक. हमारा कह नहीं, हमें पहले कोई नोटिस दिया था, पहले बताया था, हमें कुछ नहीं पता. अचानक से खबर देनी अचानक कोर्ट का ऑर्डर है, हमें कोई कुछ नहीं बताया हम लोगों को. अब हम लोग कहाँ जाएंगे.
3: हाउसकीपिंग का काम करती हूँ. मेरी उम्र देख रहे हो आप, मेरी उम्र देख रहे हो कैसा हो गई. काम करते 25-30 सालों से काम करते करते ये हो गया. अब ये क्लब चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे.

0: तो उसके लिए तो अभी सरकार ने कुछ करना चाहिए, सरकार ने बोलना चाहिए भाई।
1: All right, so increase in diesel and petrol prices, fourth increase in the last 10 days. Let's now tell you about the politics, which has been triggered. A massive political showdown with the opposition now slamming the center. Hitting out at the center, Congress questioned the government's policies and argued that the government only cares about businesses but not common people. Whereas DMK and UBT stated that BJP is not able to run the government and they are being dishonest with the people of India. Meanwhile, BJP has defended the move and said that the situation is beyond our control and justifying that price hike as it had become inevitable. Consequently, only a minimum increase has been implemented.
2: So, to shield citizens, therefore, and businesses from the steep rise in global crude prices, central excise duty on petrol and diesel was reduced by 10 rupees per litre. The government is estimated to take a revenue impact of over 1 lakh crore on this one score in the year 26-27 because of this one decision. So the burden for a considerable period because of that reduction in excise duty had been taken away from the shoulders of the common people because government has foregone or taken the burden of 1 lakh crore rupees on its shoulders.
3: इसको वो बेचना है, बेच रहे हैं अपने दोस्तों को। ऐसा मुल्क बढ़ता है, ऐसा मुल्क अमीर बनता है। अमीर सबको बनाना है, आपको एक को अमीर, दूसरे को इतना गरीब भी मत करो कि वो खाड़ी में गिर जाए और इसको आकाश में मत बिठाओ। यही आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, ये है सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास। कहाँ है किसी का ना आप सलाह लेते और अपने जो उनकी विचारधारा है उस विचारधारा से वो इतने उनको ईगो आया है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अरे भाई, तुमको ज़्यादा सीट आने से देश का उद्धार होने वाला नहीं है। आपको अच्छी पॉलिसी और अच्छे गरीबों के लिए काम करने से आपको नाम आएगा, ना कि इस ढंग से प्राइसेस बढ़ाना, नौकरियां कम करना।
4: आज का परिस्थिति बहुत बहुत परेशान है, लोगों में परेशान में है। गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग टू एड्रेस द इश्यू। दे आर कंप्लीटली सिटिंग एंड प्राइम मिनिस्टर इज टूरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। Every day petrol diesel price is increasing, people are in a very very big difficulties.
5: अमेरिका ईरान का युद्ध है, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। जब चुनाव चल रहे थे पांच राज्यों में, तब तो सरकार ने इसके भनक लगने नहीं दी। अब चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार डेली कितनी बार तो पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गए हैं, एवरी डे रोज बढ़ रहे हैं, आज फिर बढ़ोतरी करी है। तो ये जो जनता पे बोझ डालना था अगर पहले बता के करते तो क्या दिक्कत आती, लेकिन चुनाव के समय भाषण देना, अब कह रहे हैं कि बचत करनी है, खाने के तेल में कमी करनी है, सोना नहीं खरीदना, और पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने से चौतरफा महंगाई बढ़ती है। जब दाम बढ़ते हैं पेट्रोल डीजल के तो खाने के पदार्थ हो या कोई भी चीज़ महंगी हो जाती है, तो महंगाई पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है।
6: और अभी तो रुका हुआ है, सत्य परिस्थिति ये है कि जो वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट हम जिसे कहते हैं वो वॉर अभी तो रुका हुआ है, टेंशन बिल्कुल जारी है, लेकिन वॉर तो रुका हुआ है, थमा हुआ है। इसी परिस्थिति में अगर आप देखिए तो हमारी करेंसी रुपया, ये एशिया की सबसे महत्वपूर्ण करेंसी है। परिस्थिति ये भी है कि पिछले साल के बाद पाकिस्तान के रुपये के खिलाफ भी अपनी जो करेंसी है घटी हुई है। तो बात यही है कि ये सिर्फ एक वॉर के कारण से नहीं है, आज रुपया घटे,
7: सरकार देश के लोगों को रोज तिल तिल कर मार रही है, एक झटके में नहीं खत्म कर रही, तिल तिल करके मार रहे हैं। किसी दिन एक रुपया तेल का

किड्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए। ऐसे में करिकुलम पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं।

0: लाया गया है।
1: धन्यवाद मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को नमस्कार। ये बहुत रेलिवेंट प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि जो NEP 2020 है, सबसे पहले उसकी स्पिरिट को समझना ज़रूरी है। यहाँ पे अभिभावक भी हैं और शिक्षक भी हैं
0: और बच्चे भी हैं
1: मगर बच्चे तीसरे नंबर पे आते हैं। मैं जब कहता हूँ तो पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और फिर टीचर की है और फिर बच्चा आता है पिक्चर में। तो अभी NEP 2020 ने कुछ बेसिक बातें बताई हैं और उन बेसिक बातों में आप सबसे पहले NEP 2020 किस तरह से बनी है, इसको अगर नहीं समझेंगे तो आप NEP की स्पिरिट को नहीं समझ सकते। NEP 2020 जो बनी है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट वाइडेस्ट कंसल्टेशन आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन।
0: राइट।
1: कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जितना कंसल्टेशन हुआ था बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसके बाद का लार्जेस्ट कंसल्टेशन इसमें हुआ है। तो कंसल्टेशन वॉज डन बिकॉज टू गेट द फीडबैक फ्रॉम ऑल वट टाइप ऑफ एजुकेशन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड एंड देन इट केम टू अस दैट द पॉलिसी हैज़ कम आफ्टर 185 ईयर्स आफ्टर मैकोलियन वर्डिक्ट। द पॉलिसी वॉज सपोज टू बी चेंज्ड, पॉलिसी को बदलना चाहिए था जब इंडिपेंडेंट हम हुए थे, नहीं बदली। कॉलोनियल जो एजुकेशन सिस्टम था वो हैंगओवर अभी भी है, और कॉलोनियल उसका क्या हॉलमार्क है, सबसे बड़ा है रोट लर्निंग कॉलोनियल सिस्टम का पार्ट है और उसमें बाबू प्रोड्यूस करने के लिए बनाया था, जैसे आप सबको पता है। तो NEP 2020 उससे ड्रिफ्टेड अवे हुई है, क्योंकि जो बड़ा स्कीम ऑफ एजुकेशन था, जिसको नई बुनियादी तालीम महात्मा गांधी ने कहा था 1937 में, उसके 65% तो उसमें से इसमें NEP में है। तो पहली बात तो ये समझनी है, 66 पेज का डॉक्यूमेंट है मगर एक एक शब्द उसके दो दो बार तीन तीन बार पढ़ने के लायक है। मैं समझता हूँ शिक्षकों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। अब उसमें तीन चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बड़ी बात तो है कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करनी है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के द्वारा और ट्वाई बेस्ड पेडागोजी।
0: जी,
1: तीन शब्द हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ट्वाई बेस्ड पेडागोजी एंड जॉयफुल लर्निंग। अल्टीमेटली जॉयफुल, जॉय इज
0: द कीवर्ड। यस,
1: या कीवर्ड। अब इसको कैसे किया जाए, इसके लिए रोट लर्निंग से पीछा छूटना जरूरी है, क्योंकि अभी तक क्या होता है, अभी तक भी वही माइंडसेट है कि बच्चा स्कूल में बाद में जाता है, पहले टीचर उसको लिखाना शुरू करते हैं, पेरेंट्स उसकी देखते हैं कि क्या लिख के आया स्कूल में, क्या याद किया, उसका उसको कोई मीनिंग पता नहीं है। अब सबसे बड़ा जो चेंज इससे आया है कि एक तो हमारा स्कूल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। देखिए, हमारा स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है, इसमें 5+3+3+4 आया है। ECCE पहली बार आया है, जो कि हमारी भारतीय परंपरा में बहुत पहले से था। प्राचीन भारत में जो था वो परंपरा हमने बीच में छोड़ दी और हम जो है फॉर्मल एजुकेशन में आ गए। मतलब ECCE सबसे बड़ा है कि बच्चा जो है, वैसे तो 0 से 3, अब जो जब बच्चा गर्भ में आता है माँ के, तो माँ को ठीक रखना जरूरी है, और माँ अगर ठीक है तो बच्चे का गर्भ में स्वस्थ विकास होगा। इसके लिए हमारे पास पहले संस्कार होते थे, देखिए वो संस्कार अब नहीं होते हैं। गर्भाधान संस्कार था, पुंसवर्ण संस्कार था, सीमंतोन्नयन संस्कार था, निष्क्रमण संस्कार था, और फिर उसके बाद जातकर्म संस्कार था, उसके बाद नामकरण संस्कार था। ये सारे संस्कार अब नहीं होते हैं। ये प्राचीन समय में जो संस्कार थे इसीलिए थे कि माँ और बच्चा स्वस्थ रहे और फिर बच्चे पर, माँ पर ध्यान दिया जाए और फिर बच्चा जब होता है तो एक बात। दूसरी बात फिर जो है, दूसरी बात आती है फिर कि अब इसमें जो फाउंडेशनल स्टेज हमारा है, अब उसमें 3 to 8 फॉर्मल स्कूलिंग शुरू हो जाता है। 3 साल में बच्चा स्कूल नहीं, मतलब बाल वाटिका में जाएगा। अभी हम KG वगैरह बोलते हैं, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी चेंज करना जरूरी है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम टर्मिनोलॉजी चेंज नहीं करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर टर्मिनोलॉजी चेंज नहीं करेंगे तो आपको वो सेंस आएगा नहीं। बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, ये 3 साल का ये है। उसके बाद फिर बच्चा फर्स्ट में एडमिशन लेगा 6 साल का जब होगा फॉर्मली, और उससे पहले एडमिशन उसको इस तरह से पढ़ाया नहीं जाएगा फॉर्मली। अब उसके बाद जब स्कूल में एडमिशन लेगा तो उसके बाद 3 महीने का एक विद्या प्रवेश कार्यक्रम है। उस विद्या प्रवेश कार्यक्रम में हम ये देखते हैं कि स्कूल रेडीनेस, बच्चा, सारे बच्चे आ रहे हैं, कोई बाल वाटिका से आ रहा है, कोई आंगनबाड़ी से आ रहा है, कोई कहीं, अब उनका लर्निंग जो लेवल है एक जैसा है कि नहीं, उनका मेंटल डेवलपमेंट एक जैसा है कि नहीं है, उसको करने के लिए हमने विद्या प्रवेश कार्यक्रम चलाया NCERT ने, और बहुत मैसिव उस पे चल रहा है।
0: मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि एक विजनरी सोच रही इस बदलाव के लिए जिस पर अमल अब किया जा रहा है।
1: तो अभी इसके आगे मैं आ रहा हूँ, आप अभी थोड़ा 2 मिनट और बोलने दीजिए तो समझ में आ जाएगा लोगों की क्या है। ये जो इस सोच के तहत हमने पंचकोश का विकास की बात

0: पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश, आनंद है। और उसके लिए फिर हमने क्या लर्निंग जो जो नेशनल करिकुलम फॉर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल फाउंडेशनल स्टेज बनाया उसमें जादुई पिटारा हमने बनाया। जादुई पिटारा में हमारे 53 आइटम्स हैं और जादुई पिटारा में कोई किताब नहीं है, उसमें एक है आनंद एक्टिविटी बुक जिसमें बच्चा सारे 53 आइटम्स को देख करके बच्चा अपने हिसाब से कुछ करेगा, उसमें बताना कुछ नहीं है, वो अपने आप करेगा। और एक है उन्मुख जो टीचर की ट्रेनिंग के लिए कि जादुई पिटारे को कैसे हैंडल करना है, कैसे देखना है। तो जादुई पिटारा का आप जो फॉर्मेशन है आप लोगों ने देखा होगा, उसका आउटर कवर ही आपको 2-3 दिन समझने की ज़रूरत है और फिर वहाँ से बच्चा उसके साथ अपने को ग्रो करता है, इवोल्व करता है। वहाँ से बच्चे का एक्सपीरियंशियल लर्निंग शुरू होता है, वहाँ से बच्चे का टॉय बेस्ड पेडागोजी शुरू होता है, वहाँ से बच्चे का जॉयफुल लर्निंग शुरू होता है। तो ये सब चीज़ें हमने शुरू से की हैं और उसके बाद हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको आप देखिएगा। तो आप कुछ और पूछ रही हैं या इसी प्रश्न पे आगे?
1: इसी प्रश्न पे मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल शुरुआत से लेकर जब एक बच्चा स्कूल पास आउट करता है तमाम बदलाव की ज़रूरत थी और वो बदलाव आप लोगों ने किए, लेकिन जो ताज़ा एक मामला है क्योंकि पूरा देश देख रहा है, हम लाइव हैं अपने नेटवर्क पर भी और यहाँ पर बैठी ऑडियंस है, तमाम सवाल जहन में है। ताज़ा मामला जो है वो क्लास 9 और 10 के R1, R2 और R3 लैंग्वेजेस, नेटिव लैंग्वेजेस को लेकर है। आप स्कूल समर वेकेशंस के लिए बंद हो चुके हैं, आप कह रहे हैं कि ये बदलाव ज़रूरी था स्कूलों में, ये तैयारी आपको क्या दिख रही है? स्कूल बंद होने से ठीक पहले CBSE की तरफ से यह आदेश आ गया कि 1 जुलाई से तमाम CBSE स्कूलों में R1, R2, R3 लागू कर दिया जाए, पर हम ये भी समझते हैं और यहाँ पर मौजूद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये भी जानते हैं कि कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर फॉरेन लैंग्वेजेस एक विषय के तौर पर सिखाए जा रहे थे जो जिन्होंने क्लास 9 में उसे ऑप्ट किया था, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, स्पेनिश हो। ऐसे में जब आप बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या और वक्त स्कूल्स को नहीं देना चाहिए था? क्या मुश्किल में अब वो स्टूडेंट नहीं है जो ये समझकर उसने ये ऑप्ट किया था क्योंकि मेरा अब ये मेरे लिए अब ये एक लैंग्वेज है जिसमें मैं बोर्ड दूंगा, 9th में पढ़ूंगा और 10th में जाकर मैं इस पर बोर्ड दूंगा। तो इस वक्त ये बदलाव और ज़्यादा एंग्जाइटी और कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है स्कूल के सेटअप में भी और एक स्टूडेंट के लिए भी।
0: ऐसा है कि देखिए, हम जब अपने स्कूल के दिन की याद करते हैं, हम जब कक्षा 6 में आए तो हम हिंदी मीडियम से पढ़ करके आए, अंग्रेजी पहली बार लिया हमने। आज हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छे अच्छे लोगों से ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए नहीं कि हमने एक से नहीं पढ़ी। मेरे बच्चे खुद बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, अच्छे अच्छे टॉप के, उनकी अंग्रेजी मैं ठीक करता हूँ। ठीक, तो एक मानसिकता से बाहर आने की ज़रूरत है। हम किसी भी नई चीज़ को अगर हम स्ट्रेस के साथ लेंगे तो वो हम स्ट्रेस देगी, और किसी भी नई चीज़ को हम स्वागत करेंगे कि एक नया चांस है, अपॉर्चुनिटी है लर्न करने के, चलिए देखते हैं। संस्कृत हमने बाद में पढ़ा, हमें संस्कृत भी अच्छी तरह से आती है और 2 साल ही पढ़ा सिर्फ। अभी आप देखिए, जितने भी मल्टीलिंगुअल हैं, बड़े बड़े 14-14 भाषाओं के ज्ञाता हैं, उनका एक्सपीरियंस देखिए, उन लोगों ने 10-12 साल में 10-12 साल 14 साल के होने के बाद लैंग्वेज पढ़ना शुरू किया। ये प्राचीन भारत से जो लैंग्वेज का फॉर्मूला है वो इस प्रकार का है कि जितना बच्चा जल्दी लैंग्वेज को सीखना चाहेगा उतना उसके लिए सीखने के लर्निंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, उसका मेंटल जो कॉग्निशन है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो लैंग्वेज को पढ़ने के लिए कुछ अच्छा, R1, R2, R3 तो बहुत साधारण भाषा है, जो प्राइमरी स्टेज की भाषा है, वहाँ से शुरू करना है। अगर एक भाषा बच्चा और उसमें से सीख लेता है तो मैं समझता हूँ कि उसको बहुत आगे पूरे देश की बात जानने का मौका मिलेगा। हम कई जगह जाते हैं अपने को अनपढ़ महसूस करते हैं क्योंकि हम वो भाषाएँ नहीं जानते, हम अपने को डिप्राइव्ड महसूस करते हैं और फिर लगता है कि अगर हमने भी ये भाषा पढ़ी होती तो हम और ज़्यादा जान सकते
1: हैं। ने आपका ये तर्क या रीज़न सही लगता, अगर हम क्लास 6 ऑनवर्ड्स अगर ये बदलाव हुआ है इसका स्वागत सभी कर रहे हैं, लेकिन क्लास 9th और 10th के लिए ये अनड्यू प्रेशर नहीं है क्योंकि स्कूल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो उस तरह का फैकल्टी नहीं है?
0: आपकी बात ठीक है, इसमें कुछ समस्याएँ आएंगी और उन समस्याओं को मिल करके हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक बड़ी बात NEP ने कही है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देखिए, हर चीज़ स्कूल नहीं कर सकता, हर चीज़ टीचर नहीं कर सकता। कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे मास्टर ट्रेनर्स हैं जिनको लेकर के कि हम बहुत सारी नई बातें जो कह रहे हैं उनके उनके सपोर्ट से करनी है। स्कूल और समाज को एक साथ मिलकर के काम करना होगा। कम्युनिटी को साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो NEP जैसी पॉलिसी कैसे लागू कर पाएंगे? अभी तक तो केवल हम एक फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करते थे। अभी पहले आप देखिए, हमारे जो ज्ञान परंपरा है वो क्या केवल स्कूल से आई है? क्या पूरे समाज में ज्ञान है? और हम कह रहे हैं अब बहुत सारी ये कि यही चीज़ नहीं हुई है। टीचर को ट्रेनिंग के लिए मेंटर्स की बात की, मेंटर मेंटी की बात की गई है, इतने सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो अगर हम लोग
1: कह रहे हैं कि जिसके पास फैकल्टी नहीं है तो समाज से ऐसे लोगों को जोड़े अपने स्कूल से,
0: बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास है ना,
1: ये तो एक नई जिम्मेदारी आप लोग स्कूल को दे रहे हैं।
0: नहीं, स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है ये, समाज को इन्वॉल्व करना कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर स्कूल है तो उसको समाज के साथ मिलकर के चलना चाहिए। स्कूल की जिम्मेदारी यही है कि समाज के साथ, शिक्षा किसके लिए, समाज के लिए, शिक्षा किसके लिए है? अगर समाज में लोग हमारे साथ आना चाहते हैं तो उनको क्यों रोकें? हम ये कह रहे हैं, सिंपल सा है, अभी विद्यांजलि कार्यक्रम है, देखिए कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ऐसे मेंटर्स एक वॉलंटरी जो है अपने आप लोग वॉलंटियर कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, एक्सप्लोर तो करना है ना। ठीक है, शुरू शुरू में दिक्कत हो सकती
1: है। दिल्ली जैसे स्कूलों में अगर किसी फैकल्टी को ढूंढना है, तमिल जो सिखा पाए, जो गुजराती सिखा पाए, बांग्ला असमिया सिखा पाए, तो ऐसे में दिल्ली में जैसे शहर में मुश्किल नहीं होगा स्कूलों के लिए, ये परेशानी नहीं होगी?
0: ऐसा है, ऑनलाइन कितनी सारी चीज़ें सीख सकता है बच्चा, कितनी सारी चीज़ें ऑनलाइन सीख सकता है। थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे हैं, आपने कहा फ्रेंच स्पेनिश वो भी पढ़ना चाहिए, परंतु उसके लिए दूसरे चांसेस, जो हमारा जो हम स्किल की बात कर रहे हैं ना, स्किल में वो चीज़ आ सकती है, कम्युनिकेशन स्किल में आ सकती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा वो ना पढ़े, स्किल में पढ़ सकता है। तो समय लगेगा, मैं मानता हूँ कि मैं मानता हूँ कि एकदम कोई चीज़ आती है तो दिक्कत होती है,
1: पर हम जब बात कर रहे हैं कि हम AI रेडी हैं, हम ग्लोबली जो चैलेंजेस हैं उसके लिए तैयार हैं, तो ऐसे में जब हम नेटिव भाषा की तरफ जाते हैं, तो जब इंटरनेशनल स्टेज में जो इनोवेटर्स बनेंगे हमारे देश के, जॉब क्रिएटर्स बनेंगे, उनके लिए इस तरह,
0: अच्छा मैं आपको
1: बता, चैलेंजेस प्रोफेसर नाली,
0: बिल्कुल ठीक है, आप बताइए, जो डेवलप्ड नेशन है जापान, वहाँ जापानीज है, चाइना मैंडरिन है, फ्रेंच फ्रांस में फ्रेंच है, मैं पूरे यूरोप गया हूँ, पूरे यूरोप में गया हूँ, इंग्लैंड को छोड़ करके, इवन वेल्स में भी उन्होंने मिशन टारगेट किया है। मैं वेल्स के स्कूल में गया था, उन्होंने मिशन बनाया है कि 2050 तक हम केवल वेल्स की लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे। जितना ज्ञान आपकी स्थानीय भाषाओं में, संस्कृति की भाषा, आप संस्कृति को समझ सकते, उतना अगर ग्लोबल आप जमना चाहते हैं तो लोकल को छोड़ करके ग्लोबल नहीं बन सकते। पहले हमारे पैर अपनी ज़मीन पर टिके होने चाहिए और फिर उसके बाद हम दुनिया को फतेह कर सकते हैं। प्राचीन भारत में बताइए, प्राचीन भारत में जो हमारा ज्ञान है, आप अगर देखेंगे कि आज भी हम उतना साहित्य सृजन कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी, आखिरी काल जी ग्रंथ है रामचरितमानस। वो रामचरितमानस बताइए, हमारे लोग सुरिनाम गए, ट्रिनिडाड गए, टोबैगो गए, मॉरिशस गए, वो सब मजदूर के रूप में गए थे। आज उनके पास वो क्या लेके गए थे? तुलसीदास की रामचरितमानस का एक गुटका लेकर के गए थे। उनकी पीढ़ियां, मैं नीदरलैंड गया था लेक्चर देने के लिए और मैं सुरिनामी भारतीयों से मिला, वो रामलीला मनाते हैं और होली में होली का गायन करते हैं, होली खेले अवध में रघुवीरा, होली खेले अवध में, उनकी वो पीढ़ी आज भी उससे जुड़ी हुई है। वो कौन सा ग्लोबली डेवलप्ड नहीं है? ये बात हमको अपने से निकालनी पड़ेगी कि केवल हम दूसरे की बात को समझ करके आगे बढ़ सकते, हम अपनी बात को मनवाएं लोगों से। भारत के पास अपार संसाधन है, अपार ज्ञान है, क्यों ना विश्व को उस ज्ञान से जोड़ा जाए। और जो भारत विश्वगुरु जाना जाता था पहले, वो विश्वगुरु किस लिए जाना जाता था? क्योंकि हम लोग उस समय नॉलेज हमारे पास था, नॉलेज हमारी पावर ऑफ नॉलेज था हमारे पास, और इसलिए सोने की चिड़िया भी थी। विकसित भारत बनना है, आप दूसरे के भरोसे नहीं बन सकते। आप अपने रिसोर्सेज और संसाधनों को नहीं समझेंगे, और उसके लिए भाषाओं को समझना जरूरी है। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, भाषा ज्ञान और संस्कृति का एक मैसेंजर है, एम्बेसडर है। बिना
1: कह रहे कि इस वक्त जरूरी है, ये बदलाव है, उसके लिए
0: मुझे लगता है कि NEP ने कहा है, हम लोगों को इसको, बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। थोड़ा कष्ट जरूर होगा, हम लोग सब साथ हैं।
1: कष्ट ट्रांसलेट स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, स्पेशली 9th और 10th स्टूडेंट के लिए, उनके भी आप में मैं कहना चाहता
0: हूं। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए कष्ट हो रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि उनके लिए कष्ट हो रहा है। अगर स्टूडेंट अपना मानसिक वो सोच बढ़ा देंगे और सोचेंगे कि हमें करना ही है, तो स्टूडेंट के पास अपार एनर्जी है। देखिए, स्टूडेंट अगर
1: सुविधाएं और सहूलियत नहीं है,
0: सुविधाएं मिल रही हैं, किताबें भी आ जाएंगी और ऑनलाइन मटेरियल भी है, और R3 की किताब अभी क्या है, देखिए R3 की जो किताबें हैं ना, जैसे हमने कहा SCERT की जो किताबें हैं, SCERT की जो शुरू की किताबें, जैसे संस्कृति की किताब है, देखिए 6 के स्तर पर जो संस्कृति किताब जो 6 में शुरू करता है, वो 9th में R3 में आ सकती है जिस बच्चे ने। ऐसे ही तमिल की किताब है, R3 की किताब ला करके आप जो प्राइमरी किताब है, अब इतना तो आप मानेंगे, आप सब लोग मानेंगे, बच्चे भी मानेंगे, अगर बच्चा पहली क्लास में आता है और वो कोई भाषा सीखता है और बच्चा 9वीं क्लास में उसी भाषा को सीखता है, तो क्या उसके समझ में फ़र्क होगा कि नहीं होगा? फ़र्क होगा, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि अगर हम छोटे बच्चे को ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल जिनसे बच्चा कोरिलेट करता है, एज अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल देते हैं, तो हम बड़े बच्चे को उसकी एज अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल दें, मगर टर्मिनोलॉजी सब

0: रेगुलरी तो वही रहेगी समझने की। तो इसलिए मेरी समझ से इस तनाव को, इस दबाव को हम खुशी से अगर कहेंगे कि एक अपॉर्चुनिटी है, तो ये तनाव और दबाव अपॉर्चुनिटी में बदलेगा और हमें वातावरण बदलना पड़ेगा। NEP को लागू करना है तो ये करना पड़ेगा और इसके फायदे आपको बाद में मिलेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ।
1: जी जी।
0: जो अनिल बंग थे, अनिल बंग का नाम सुना होगा, वो हार्वर्ड के लिए उनका सिलेक्शन हुआ था फेलोशिप के लिए, ठीक है, हार्वर्ड के लिए वो सिलेक्शन हुआ और महात्मा गांधी के पास दौड़ करके गए चिट्ठी लेकर के कि बापू मैं जो हूँ वहाँ सेलेक्ट हुआ हूँ, मेरे फेलोशिप मिल रही है। तो उन्होंने कहा वहाँ जाके क्या करोगे? कि मैं भारत के अर्थशास्त्र को समझूंगा। तो उन्होंने कहा तुम वहाँ जा करके भारत का अर्थशास्त्र समझोगे? इतना ही बोला। अनिल बंग वापिस आए, उन्होंने पूरा वो देखा और उसको फाड़ करके फेंका चिट्ठी को, नहीं गए। और उन्होंने कितना काम किया आप सबको पता है। तो भैया कह रहा हूँ कि आप इतना परेशान, ठीक है ये सब जिम्मेदारी समाज की है और सरकार की भी है, व्यवस्थाओं की भी है, हम सब
1: और ये व्यवस्था बनानी होगी और इस तरह से आश्वस्त करना होगा छात्रों को। बहुत हम इस बातचीत के आखिर में पहुंच गए। मेरे दो छोटे से सवाल हैं। पहला सवाल ये कि जो रैशनलाइजेशन सिलेबस का हुआ है, हर बार जब आप लोगों ने बदलाव किया है सिलेबस को, उसमें एक विवाद जुड़ा है, चाहे वो कक्षा

0: alternate plot and the future of the 500 employees of the club. Center's eviction notice has sparked a political war of words, with the Congress claiming that the BJP is trying to wipe out the historic symbols of the capital. While RJD has stated that there might be involvement of big personalities that are actually eyeing the area that spreads over 27 acres and includes 26 tennis courts, 3 squash courts, then there are billiards room, there's a covered heated swimming pool, and of course, 43 cottages.
1: हमारे को तो इस बारे संदर्भ में किसी चीज से कोई हमारे को बताया नहीं गया कि क्या होना है इसमें या क्या हुआ. हम सचिव महोदय से के पास भी गए थे कि भाई क्या नोटिस, उन्होंने कहा नोटिस आया उसमें 5:30 बजे तक मीटिंग होगी, उसमें क्या निष्कर्ष निकला इसके बारे में भी हमें कोई पता नहीं है. परंतु जैसे ही खबर हमारे स्टाफ में लगी तो सारा स्टाफ मायूस में है, शोक में है कि हमारा फैमिली का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा. हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते, भारत सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप लोग इतनी जल्दी इतना हम 6000 आदमी पे 6000 हमारे 600 एम्प्लॉय उसके फैमिली लगा करके 6500 परिवार है, क्या होगा उनका
2: मामला. हम लोगों को अचानक कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं बताया इन लोगों ने. अचानक आके हमसे कहा जी कल 5 जून को कोर्ट का ऑर्डर है, कल बंद हो रहा. हमारे तो बहुत धक्का लग रहा है, यहाँ पे नौकरी करने के कम से कम 35-40 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमें कुछ बताया नहीं जा रहा, कुछ नहीं गया. अचानक ऐसे भेजा गया, कल अचानक हमें कल पता लगा. अब सब परेशान है, कुछ लोग यहाँ 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, कुछ 20 साल से, हमने खुद 36-37 साल हुए हमें जॉब करते हुए, हम कहाँ जाएंगे, बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे. अचानक हमारा क्या नहीं, हमें पहले कोई नोटिस दिया था, पहले बताया था, हमें कुछ नहीं पता. अचानक से खबर नहीं, अचानक कोर्ट का ऑर्डर है, हमें कोई कुछ नहीं बताया. हम लोगों को अब हम लोग कहाँ जाएंगे.
3: हाउसकीपिंग का काम करती हूँ, मेरी उम्र देख रहे हो आप, मेरी उम्र देख रहे हो, कई साल हो गई काम करते, 25-30 सालों से काम करते करते ये हो गया. अब ये क्लब चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे. हमारे बच्चे वैसे ही रोड पे आ रखे, हमारी झुग्गियां वैसे ही टूट रही है. 26 तारीख को आदेश मिला हुआ हमें तोड़ने का, ये रोजी ये रस हमारा घर चल रहा था, हमारी रोजी रोटी चल रही थी, इससे हमारा ये भी छीनने जा रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे. जहाँ क्लब जाएगा वहाँ हम जाएंगे, क्लब मिलना चाहिए. कहाँ क्लब को जगह देंगे वहाँ हम भी जाएंगे.
4: अच्छा है यार, ये तो एलीट क्लास के लोग हैं, इनके बारे में मुझे, गरीब आदमियों की बात करिए मुझसे, ये एलीट क्लास के लोग हैं. इनसे क्या होना है, जिमखाना से क्या हो रहा है, जिमखाना में क्या है, जिमखाना भाई, ये एलीट क्लास लोगों के चोचले हैं, इसके अलावा कुछ है इसके अंदर.
5: नवनिधि शर्मा द फादर ऑफ त्विशा जॉइंस मी वन ऑन वन फॉर द फर्स्ट टाइम.
6: शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है. भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर, दे आर कैमेलियन पीपल.
7: अ ब्रदर Major Harshit speaks out for the first time on national television.
8: We have been fighting non-stop. We are not stopping until the justice is served.
9: Missing, where is your son? Let me ask you that pointed question.
10: He is ready to face all the questions, but he has to exhaust his legal remedies.
11: Breaking news coming in. Samarth Singh has finally surrendered. These are fresh visuals coming on your
12: screen.
11: First on NDTV. NDTV is the only network in the country that is relentlessly chasing this case.
7: Joining us live now for the first time is Nagendra Singh, senior advocate, appearing for...
13: Welcome back. We get you another breaking news from the state of Tamil Nadu, where 3 former AIADMK leaders have now joined TVK. Let's tell you more about AIADMK has hit out and has called this perhaps horse trading. 3 ex-AIADMK MLAs have jumped the ship to TVK after the meeting with Adhav Arjuna. AIADMK has further called this horse trading before the speaker and accepts resignation of 3 MLAs. Are all set to join TVK at this point of time. Tamil Nadu speaker has also accepted the resignation, and this of course comes, the defections comes at a time when AIADMK has been facing multiple crises and also a not so good performance in the elections this time around. Now the 3 MLAs, former AIADMK MLAs who've joined TVK, their names are Margatham, Jaya Kumar and Satai Bama, who gave the resignations to the governor and are all set to join TVK. AIADMK has perhaps hit back at that and called this a planned horse trading. I want to go across to my colleague Vijay for more on this. Vijay, we were talking about how the crisis is only increasing for the AIADMK party after its defeat in the election this time around. But the

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

समाज को नई दिशा दी है और यही भारत की सबसे बड़ी शक्ति भी है, उसकी विविधता। भाषाएं अलग, परंपराएं अलग, कार्य क्षेत्र अलग, लेकिन उद्देश्य एक, राष्ट्र निर्माण। और आज का यह समारोह उसी भारत की एक जीवंत तस्वीर प्रस्तुत करता है। इस समय गणतंत्र मंडप का वातावरण अत्यंत गरिमामय और भावपूर्ण है। सभागार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उस ऐतिहासिक क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जब राष्ट्र अपने इन विशिष्ट नागरिकों को अपना सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करेगा। The evolution of the Padma Awards since 2016 into a more participative and people-driven process has brought many inspiring grassroots stories into the national spotlight. माननीय राष्ट्रपति का गणतंत्र मंडप में आगमन। यह वह चिर प्रतीक्षित क्षण जिसका

माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए।

पद्म विभूषण, श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।

प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।

श्री पीयूष पांडे मरणोपरांत कला विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी।

पद्मश्री श्री विश्वबंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।

डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले एवं श्रीमती सुनीता गोडबोले चिकित्सा। डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले।

श्री आर कृष्णन किटना मरणोपरांत कला कुरुम्बा ट्राइबल पेंटिंग, उनकी पत्नी श्रीमती सुशीला कृष्णन।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Welcome back. In other news, fuel prices has been hiked again for the fourth time in the last 10 days. Petrol and diesel prices have now been increased by rupees 2.61 per liter and rupees 2.71 per liter on average. Since the last 10 days, the fuel prices have been increased by rupees 7.5 per liter, and that's exactly what has happened in the last 10 days. Meanwhile, in the national capital, petrol will now be priced at rupees 102.12 per litre. The petrol price in Kolkata is now rupees 113.51 per litre, and in Mumbai it is rupees 111.21 per litre. In Chennai, petrol cost 107.92 rupees per litre, while diesel rates increased by rupees 2.71 to rupees 95.20 per litre from rupees 92.49 per litre in Delhi. Meanwhile, as per the government sources, India has emerged as one of the least affected countries in terms of retail fuel price rise, despite a sharp global surge triggered by geopolitical disruptions.
3: Well, absolutely, and another substantial hike in the prices of petrol and diesel has outpaced the average wage income for as far as Mumbai is concerned and the common man. At present, we are here at a petrol pump in Mumbai, and to show you around, people have gathered to fill in their petrols, and to let you know, recently there were rumors that the prices for petrol, there's a shortage of petrol and diesel in the state. पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल भरवाने आए हैं, क्या बोलेंगे?
4: जी हाँ, पेट्रोल भरवाने आए।
3: तो ऐसे दाम लगातार बढ़ते जाना आपको इम्पैक्ट होगा?
4: इम्पैक्ट तो होगा ही ना।
3: तो आपका जो एवरेज खर्चा है वो अब इसकी वजह से बढ़ गया है?
4: जी हाँ मैडम।
3: कैसे कैसे चल रहे हैं इसके चलते?
4: इसके चलते थोड़ा हिसाब से पेट्रोल भरवाना पड़ता है।
3: हिसाब से भरवाना पड़ेगा?
4: हाँ जी।
3: यानी कम यूज़ करना पड़ेगा?
4: कम यूज़ करना पड़ेगा।
3: ठीक है, कब से कब कम करेंगे?
4: कभी से कम करना चालू कर रहे हैं हम।
3: वेल, यू योर पीपल हु आर सेइंग पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, क्या बोलेंगे?
5: क्या बोलूँ मैं,
3: इम्पैक्ट हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है?
5: महंगाई तो बढ़ रही है ना, तो उसके लिए तो अभी सरकार ने कुछ करना चाहिए, सरकार ने बोलना चाहिए भाई।
2: All right, so increase in diesel and petrol prices, fourth increase in the last 10 days. Let's now tell you about the politics, which has been triggered, a massive political showdown with the opposition now slamming the centre. Hitting out at the centre, Congress questioned the government's policies and argued that the government only cares about businesses but not common people. Whereas DMK and UBT stated that BJP is not able to run the government and they are being dishonest with the people of India. Meanwhile, BJP has defended the move and said that the situation is beyond our control and justifying that price hike as it had become inevitable. Consequently, only a minimum increase has been implemented.
6: So, to shield citizens, therefore, and businesses from the steep rise in global crude prices, central excise duty on petrol and diesel was reduced by 10 rupees per litre. The government is estimated to take a revenue impact of over 1 lakh crore on this one score in the year 26-27 because of this one decision. So the burden for a considerable period because of that reduction in excise duty had been taken away from the shoulders of the common people because government has foregone or taken the burden of 1 lakh crore rupees on its shoulders.
7: इको को बेचना है, बेच रहे हैं अपने दोस्तों को। ऐसा मुल्क बढ़ता है, ऐसा मुल्क अमीर बनता है। अमीर सबको बनाना है, आपको एक को अमीर, दूसरे को इतना गरीब भी मत करो कि वो खाड़ी में गिर जाए, और इसको आकाश में मत बिठाओ। यही आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, ये है सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास, कहाँ है? किसी का ना आप सलाह लेते और अपने जो उनकी विचारधारा है उस विचारधारा से वो इतने उनको ईगो आया है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अरे भाई, तुमको ज़्यादा सीट आने से देश का उद्धार होने वाला नहीं है। आपको अच्छी पॉलिसी और अच्छे गरीबों के लिए काम करने से आपको नाम आएगा, ना कि इस ढंग से प्राइसेस बढ़ाना, नौकरियां कम करना। ये सर
8: काम करना सरकार नहीं है। आज का परिस्थिति बहुत बहुत परेशान है, लोगों में परेशान में है। गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग टू एड्रेस द इश्यू। दे आर कंप्लीटली सिटिंग एंड प्राइम मिनिस्टर टूरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। एवरी डे पेट्रोल डीजल प्राइस इज इंक्रीजिंग। पीपल आर इन ए वेरी वेरी बिग डिफिकल्टीज।
9: अमेरिका ईरान का युद्ध है, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। जब चुनाव चल रहे थे 5 राज्यों में, तब तो सरकार ने इसकी भनक लगने नहीं दी। अब चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार डेली कितनी बार तो पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गए हैं, एवरी डे रोज बढ़ रहे हैं। आज फिर बढ़ोतरी करी है। तो ये जो जनता पे बोझ डालना था, अगर पहले पता के करते तो क्या दिक्कत आती, लेकिन चुनाव के समय भाषण देना। अब कह रहे हैं कि बचत करनी है, खाने के तेल में कमी करनी है, सोना नहीं खरीदना, और पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने से चौतरफा महंगाई बढ़ती है। जब दाम बढ़ते हैं पेट्रोल डीजल के, तो खाने के पदार्थ हो या कोई भी चीज़ महंगी हो जाती है। तो महंगाई पर सरकार को कोई ध्यान नहीं है।
10: वॉर अभी तो रुका हुआ है। सत्य परिस्थिति ये है कि जो वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट हम जिसे कहते हैं, वो वॉर अभी तो रुका हुआ है। टेंशन बिल्कुल जारी है, लेकिन वॉर तो रुका हुआ थमा हुआ है। इसी परिस्थिति में अगर आप देखिए तो हमारी करेंसी रुपया, ये एशिया की सबसे करेंसी है। ये भी है कि पिछले साल के बाद पाकिस्तान के रुपए के खिलाफ भी जो करेंसी है 12% से घटी हुई है। तो बात यही है कि ये सिर्फ एक वॉर की कारण से नहीं है। आज रुपए घटे, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, एलपीजी का शॉर्टेज हम देख रहे हैं, और ये सारी बातें सिर्फ एक वॉर के कारण। पिछले 12 साल से एक ऐसी सरकार हमारे भारत में रहती है जिसको सरकार नहीं चला जाती, सोशल मीडिया चला जाता
11: है। सरकार देश के लोगों को रोज तिल तिल कर मार रही है, एक झटके में नहीं खत्म कर रही, तिल तिल करके मार रहे हैं। किसी दिन 1 रुपया तेल का दाम बढ़ जाता है, किसी दिन 2 रुपए बढ़ जाता है, किसी दिन 3 रुपए बढ़ जाता है। पिछले 10 दिनों के अंदर 7.5 रुपए पेट्रोल और डीजल का दाम देश के अंदर बढ़ चुका है। देश का कोई शहर कोई राज्य नहीं बचा जहां 100 रुपए से कम पेट्रोल हो, 100 रुपए से ज्यादा है हर जगह पे। इसका मतलब जिन लोगों ने मोदी जी को या बीजेपी को प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पे कभी भी वोट दिया है, उन सब को मोदी जी महंगाई बढ़ा के बदला चुके हैं।
2: A very good evening, viewers. You're watching NDTV. It's nationwide at 6 right now. I'm Gauri Dwivedi. A quick check of the headlines for you, and then we get you that big interview that's flashing on your screens. Punjab Chief Minister in conversation with NDTV's Editor-in-Chief Rahul Kaval. But first up, a quick check of the headlines we have for you. Biggest twist in the Karnataka power play as Congress mulling Rajya Sabha leader of opposition role for Siddaramaiah. Karge Rajya Sabha term set to end soon, and Siddaramaiah to be brought to Delhi. Karge consensus chief minister pick is the big question that we have for you this evening. Shocker of a story coming to light from Madurai, where a 16-year-old hacked to death in Tamil Nadu's Madurai. Minor's murder shocks Tamil Nadu. BJP DMK train guns on Vijay Seth. Tamil Nadu becoming safe haven for murderers under Vijay Sarkar. Vijay holds a key meeting, calls for strict legal punishment. Probe intensifies in the Trisha Sharma case. CBI set to take over the case. SIT to recreate the entire crime scene. SIT says Samad Singh is not cooperating. Another fuel hike hits customers hard. Petrol and diesel rates have been hiked yet again. This is the 4th hike in fuel prices in just 10 days.
12: Donald Trump calls himself a huge fan of Prime Minister Modi and says that Prime Minister Modi can 100% count on Donald Trump, adding he loves PM Modi, describing him as great, calling him a friend.
13: जज्बे और पहचान का प्रतीक रहा है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पंजाब ने कठिन सवालों का भी सामना किया है आर्थिक दबाव युवाओं का पलायन ड्रग्स का संकट खेती की चुनौतियां और बदलती अर्थव्यवस्था के बीच खुद को फिर से गढ़ने की ज़रूरत और ऐसे समय में एक सवाल सबसे बड़ा बनकर उभरा क्या पंजाब खुद को फिर से रीइन्वेंट कर सकता है क्या एक नवा पंजाब संभव है आज की सरकार कहती है हाँ एक ऐसा पंजाब जो गवर्नेंस को तेज और जवाबदेह बनाए जो शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करे जो निवेश और रोजगार को बढ़ावा दे और जो युवाओं को फिर से अपने राज्य में सपने देखने की वजह दे इस विजन इस पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरी और पंजाब के अगले चैप्टर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री भगवत मान जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है पंजाब के कृपया उनका स्वागत प्लीज कीजिए विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज और उनके साथ जुड़ेंगे एनडीटीवी के सीईओ और एडिटर इन चीफ राहुल कमल लेडीज एंड जेंटलमैन कैन यू प्लीज हैव अनदर राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर भगवत मान जी एंड राहुल
14: पंजाब के लोगों ने ढेरों उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार को मौका दिया पिछले 4.5 साल में क्या आपने जिन उम्मीदों के साथ ये मैंडेट पाया था उस हिसाब से काम किया या नहीं 2027 का असेंबली इलेक्शन आम आदमी पार्टी के पंजाब मॉडल और चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का रेफरेंडम रहने वाला है पंजाब की जनता आपको और मान साहब को एक बार मौका फिर से क्यों दे इस पर चर्चा करने के लिए एनडीटीवी के नवा पंजाब समिट में जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान का
15: थैंक यू
14: मान साहब सत श्री अकाल वेलकम
15: बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले राहुल जी एनडीटीवी और पूरे आपके ग्रुप का जितने भी स्टाफ के आपके लोग इस बहुत ही खूबसूरत कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए आए और आपने यहाँ बुला के हमें मान सम्मान दिया तो मैं होस्ट भी हूँ तो आपका स्वागत भी करता हूँ पंजाब में और आपने इतना इज्जत मान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
14: नहीं हमें इलेक्शंस का बड़ा शौक है तो जैसे ही पश्चिम बंगाल का इलेक्शन तमिलनाडु का इलेक्शन ख़त्म हुआ मान साहब ने बोला पंजाब आओगे हमने बोला फट से चलते और जैसे ही मौका मिला टिकट कटा के यहाँ पे आ गए और इलेक्शंस के बिल्डअप में ये मान साहब का पहला इंटरव्यू है पहली बार ये तमाम सवालों के

0: जवाब लेंगे। इसके लिए मान साहब आपका शुक्रिया। शुरुआत हम लोग करते हैं आपके रिपोर्ट कार्ड से। आप स्टार्ट कीजिए। तमाम लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं मान साहब, उनको बताइए कि फिर से अगले साल पंजाब की जनता आपको मौका क्यों दे। क्या आपने ऐसा किया जो कि अकाली बीजेपी ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, कि आपको फिर से पंजाब की जनता चुन के लाए?
1: जो आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो में गारंटियाँ दी थी, आमतौर पर मैनिफेस्टो में वादे होते हैं लेकिन हमारी गारंटियाँ थी। अनफॉर्चुनेटली बाद में बीजेपी भी गारंटियाँ देने लगी। पहले तो वो संकल्प पत्र भी कहते थे, कांग्रेस वाले भी संकल्प पत्र, अब वो भी गारंटियाँ कहने लगे। तो सबसे पहली गारंटी हमारी बिजली मुफ्त की थी, जो मार्च में हमने ओथ सेरेमनी हमारी हुई 16 मार्च को। जुलाई का पहला साइकिल, जो 2 महीने का साइकिल है पंजाब में बिजली के बिल का, तो जून जुलाई का पहला साइकिल जो फ्री हमने 300 यूनिट हर एक बंदे को, उसमें कोई लाल कार्ड, हरा कार्ड, नीला कार्ड, पीला कार्ड नहीं आता। कोई भी, चाहे आपके घर पे 2 AC भी लगे, आप इस तरीके से उसको इस्तेमाल करें कि आपका जो 2 महीने का जो मीटर की रीडिंग है वो 599 रहे, 600 यूनिट से कम रहे तो 0 आता है। 90% पंजाब को बिजली का बिल 0 आ रहा है और बिजली बोर्ड को भी उस कोई ऐसा घाटा नहीं है। बिजली बोर्ड ने PSPCL हमारे कॉरपोरेशन का नाम है, हमने गोविंदवाल साहब में जीवी के कंपनी का एक थर्मल प्लांट खरीदा, पावर प्लांट जो था 540 मेगावाट का प्लांट था, 1080 करोड़ में सरकार ने खरीदा बिडिंग में, बेंगलोर में बिडिंग हुई थी। तो ये पहली बार हुआ है, लोगों ने पहली बार ऐसा कुछ देखा कि सरकारें अक्सर आके जो सरकार के अदारे होते हैं उनको घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों मित्रों को बेच देते हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने प्राइवेट कंपनी से एक अदारा जो एक 1000 करोड़ का थर्मल प्लांट खरीदा और पब्लिक प्रॉपर्टी को सरकार ने, गवर्नमेंट ने खरीदा। उसके बाद खेतों की बिजली दिन में दी हमने। उसके बाद पानी, क्योंकि पंजाब का पानी जो है वो बहुत धरती में बहुत ग्राउंड लेवल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, क्योंकि धान की फसल है, 1 किलो चावल पैदा करने के लिए हमें 3800 लीटर पानी लगता है, तो हमारा धरती का पानी जो है वो बहुत नीचे जा चुका था, उसको रिचार्ज करने का प्लान बनाया। आज हम कह सकते हैं कि जब हमने ओथ ली थी तो 22% पानी इस्तेमाल होता था सिंचाई के लिए, आज 78% हम पानी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने नौकरियां देनी शुरू की, 65,264 नौकरियां देकर आपके सामने बैठा हूँ। एक सिंगल बंदा भी हाथ खड़ा करके नहीं कह सकता कि मेरे से पैसा लिया कोई, या मेरे नंबर कम थे, मेरे से कम नंबर वाला जो है वो सिफारिश लग गई किसी MLA की, मंत्री के कोटे में आ गया, उसको नौकरी मिल गई। नो, एक घर में 3-3 नौकरियां भी मिली हैं, एक बंदे को 3-3 मौके भी मिले हैं। तो उसके बाद लोगों का विश्वास बढ़ा, हमारा भी विश्वास बढ़ा। हम 43,000 किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं पंजाब की सड़कें, जिसमें से 12-13 हज़ार किलोमीटर बन गई। हम 3,000 से ज़्यादा गाँव में स्टेडियम बना रहे हैं, ताकि फिर हमने वो युद्ध नशे विरुद्ध शुरू किया ड्रग्स का, आगे आने वाले आपके सवाल भी होंगे शायद इसके इस सिलसिले में, उसका मैं डिटेल में जवाब दे दूंगा। तो लोगों का विश्वास, यार पहली बार हुआ है, जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं, गारंटियाँ पूरी हो रही हैं। तो सारी गारंटियाँ हमने पूरी, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए, देखो इंडस्ट्री जो है वो वहीं पे आती है जहां उनको माहौल मिलेगा। टाटा स्टील सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, लुधियाना में उनका प्लांट चालू हो गया है, 3200 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है। हमारे पास रॉयल डी हॉज जो डच कंपनी है वो कैटल फीड बनाती है, हमारे पास कारगिल है, हमारे पास गोदरेज है, हमारे पास ये हीरो और वर्धमान तो हमारे अपने ब्रांड है। तो हमारे पास इतनी कंपनियाँ जो देश में, जिनको हम साउथ कोरिया भी गए, जापान गए, वहाँ से कंपनियाँ जो इधर आ गई, हमारे पास क्लास है, यनमार है, जापान की कंपनी है जो सोनालिका के साथ काम करती है, तो एग्रो मशीनरी में है वो। तो मेरे टिप्स पे पड़े हैं कि कितने 5 लाख से ज़्यादा युवाओं को, लड़के लड़कियों को वहाँ काम मिल गया। तो पंजाब को अब सिर्फ हम एग्रेरियन स्टेट ना कहें, साथ साथ में हम इंडस्ट्रियल स्टेट भी हैं। पहले मंडी गोविंदगढ़ देखो, हमारी सबसे बड़ी लोहे की मंडी होती थी एशिया की, वो उजड़ गई थी, अब दोबारा उसको रिवाइव कर रहे हैं। जो लुधियाना है, लुधियाना हौजरी के

0: माना जाता है, अमृतसर टेक्सटाइल के लिए माना जाता है। तो हम अपनी इंडस्ट्री जो मौजूद है MSME उसको भी बचाना है और बाहर वालों को भी लाना है, ये हमारा मकसद।
1: आप वो वायदे गिना रहे हैं जो आपने पूरे किए, पर कई सारे ऐसे वायदे हैं जो आपने किए लेकिन पूरे नहीं किए। आपने बोला था कि महिलाओं को 1,000 रुपये देंगे 2022 के आपने मैनिफेस्टो में बोला था, उसके बाद 4 साल निकल गए, अभी भी जो आपका लेटेस्ट बजट आया है उसमें आपने प्रोवाइड नहीं किया। अब आप रजिस्ट्री ले रहे हैं तो फिर तो वो हो गया कि चुनाव से पहले आप दे देंगे पैसे, 4 साल तो आपने दिए नहीं सर।
0: उसके लिए बजट रखा है। देखो राहुल, जो गारंटियाँ दी जाती हैं वो विद इन 5 ईयर्स होती हैं कि विद इन 5 ईयर्स हम पूरा करेंगे। अभी उसके लिए बजट प्रॉपर रखा है। हम उसी समय शुरू करते हैं स्कीम जब हमारे पास ये पता हो कि ये स्कीम पैसे की कमी की वजह से बंद नहीं होगी। बिजली वाला हम पहले कर सकते थे, बिजली वाला पहले कर दिया। जब जब हम नौकरियां दे सकते थे नौकरियां दे दी। जब हम कोई SSF बनाई हमने, सड़क सुरक्षा फोर्स, वो हमने वादा भी नहीं किया था। 19 टोल प्लाजे बंद कर दिए, 67 लाख पर डे लोगों का बच रहा है जो उनको पैसे देने पड़ रहे थे कहीं भी सड़क पर जाते। और वो भी टोल प्लाजे जो दो दो साल से ओवर चल गए, ओवर हो गए दो दो साल, उनको कोई बहाना बना के वो एक्सटेंशन ले लेते थे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी महिलाओं का 1,000 और 1,500 रुपये वाला अगले महीने से पूरा होने लगेगा और ये स्कीम हमारी अब बंद नहीं होगी। हमने जितने पैसे चाहिए उतने पैसे अलग से निकाल के रख लिए। हमारी पार्टी का जो प्रेसिडेंट है ना, जो नेशनल कन्वीनर है, वो IRS ऑफिसर है इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। अरविंद केजरीवाल जी ज्वाइंट कमिश्नर रहे हैं इनकम टैक्स में, उनको पता है पैसा कहाँ से आएगा कहाँ जाना है। तो हिसाब किताब के हम पूरे
1: ये भी पता है कि पैसा इलेक्शन से पहले दो तभी ज़्यादा वैल्यू आती है। पहले 4 साल दे दोगे तो वोटर फिर उसको ग्रांटेड ले लेंगे,
0: नहीं नहीं
1: चुनाव से कुछ महीने पहले दोगे तो राहुल को याद रहेगा।
0: उससे पहले क्या होगा ना, फिर एक तो 15 लाख रुपये मोदी जी वाले आ गए थे लोगों के खाते में, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर घर घर नौकरी आ गई कैप्टन वाली, तो फिर उसके बाद सुखबीर बादल के ट्रक भर के आ गए दिल्ली से जो पैसों के लाने थे। जब नौकरी वाले रिटायर होने लगे और जो 15 लाख भी खर्च हो गए, फिर मैंने कहा अब दे देते हैं, अब जरूरत होगी लोगों को, है ना। फिर इसलिए फिर थोड़ा टाइम लग गया, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया थोड़ा।
1: पहले जब मान साहब का इंटरव्यू होता था तो उसमें मज़ा ही आता था कि हाजिर जवाबी बड़ी थी, लेकिन मुझे लग रहा है अब आप बड़े सीरियस हो गए। अभी थोड़ा सा आप क्रैक कर रहे हो जोक्स, लेकिन अब आजकल आप बहुत सीरियस टाइप का करते हो इंटरव्यू भी। पहले तो एकदम चलता था आपका फॉर्म धार धार धार।
0: नहीं नहीं, आप थोड़ा सवाल दो चार और पूछो, आने वाला फॉर्म वो।
1: अच्छा, इससे हुआ ये कि जो आपने स्कीम्स की उससे जो फिजिकल सिचुएशन है पंजाब की वो बहुत ख़राब हो गई। सेंटर ये कहती है कि मैक्सिमम डेफिसिट 3.5% 3.5% के आसपास होना चाहिए, पंजाब का डेफिसिट 4.5% है 4.5%। यानी कि आप जितनी सरकार आपकी पैसा कमा रही है उससे ज़्यादा पैसा आप खर्च रहे हो, और आप आज खर्च रहे हो इसका भुगतान करेंगे पंजाब की आने वाली जनरेशन्स। तो फिस्कल सिचुएशन इतनी ख़राब क्यों है पंजाब?
0: देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कर्जे का सवाल ना सेंटर सरकार ने सारे एंकर्स को दे दिया है। यूपी पे कितना कर्जा है? 8 लाख करोड़ का कर्जा है।
1: परसेंटेज पे देखो ना।
0: नहीं नहीं, आप यूपी की वो भी तो देखो ना, यूपी बड़ा भी है हमसे। गुजरात पे कितना, देश पे 55 लाख करोड़ देश पे कर्जा था 2014 को जब मोदी जी ने ओथ ली। आज 220 लाख करोड़ है, 4 गुना बढ़ गया। तो ना तो नौकरी मिली, 2 करोड़ नौकरियां भी देनी थी, वो तो आजकल वो कॉकरोच बन के घूम रहे हैं नौकरी वाले, तो ठीक है ना। तो नौकरी भी नहीं दी उनको, 15 लाख भी नहीं आया, देंगे वो कर देंगे। हमारे फैसले तो व्हाइट हाउस से आते हैं, हमारे पंजाब के फैसले या देश के फैसले कि जी
1: ये तो बहुत जल्दी खुल गए एकदम है। अब तो मैंने बोला कि आप सीरियस होकर जवाब दे रहे हो, आप तो एकदम ही बैटिंग करने
0: लगे। सीरियस जवाब ही है ना, जब मोदी जी पूरे देश का 220 लाख करोड़ उतार देंगे, पंजाब भी देश में ही आता है, उस दिन हमारा भी उतर जाएगा।
1: नहीं नहीं, ये हुआ एक आपने जवाब दिया, लेकिन एक पॉलिटिकल जवाब, एक बहुत सीरियस क्वेश्चन पे।
0: लेकिन हम वो विकास पे खर्चा हो रहा है।
1: हाँ जी,
0: देखो पहले वाली सरकार 3.5 लाख करोड़ छोड़ के गई थी, लेकिन मैं ये कहता हूँ 3.5 लाख छोड़ा, लेकिन 3.5 लाख करोड़ उन्होंने कहाँ खर्च किया? सड़कें मैं बना रहा हूँ, सरकारी स्कूल मैं ठीक कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज को पैसा मैं दे रहा हूँ, बिजली बोर्ड का कर्जा मैं उतार रहा हूँ, हॉस्पिटल मैं बना रहा हूँ, वो कहाँ बना के, नौकरियाँ मैं दे रहा हूँ, वो कहाँ खर्च के चले गए? जो उनके मतलब हमारा एक वित्त मंत्री था, 4 साल तो वो अकाली दल में वित्त मंत्री था, 5 साल वो कांग्रेस में वित्त मंत्री था, और अनफॉर्चुनेटली मेरा भी पार्टी का प्रधान रहा मनप्रीत बादल, वो 9 साल यही कहता रहा खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है।

0: इंटरेस्ट बर्डन आपने इंक्रीज कर दिया क्योंकि आपने खर्चे इतने बढ़ा दी जितना आपका स्टेट का रेवेन्यू है नहीं उससे ज्यादा खर्चे कर दिया आपने।
1: नहीं नहीं स्टेट देखो दो किस्म के कर्जे हैं, अगर तो लोन लेके ट्रक ले रहे हो तो ट्रक कमाई करेगा लोन उतार देगा, अगर लोन लेके आप बेटे को मोटरसाइकिल और गाड़ी लेके दे रहे हो बड़ी जो खर्चा करती है फिर वह आपका कर्जा जो है वो आपका दुगना तिगना होगा। हम पंजाब वाले जो लोग हैं किसी का कर्ज हम रखते नहीं हैं अपने सर पे, पंजाब जो है ना वो कर्जा उतारने में बहुत माहिर है, चाहे वो किसी ने थोड़ा सा भी एहसान कर दिया हो ना पंजाबियों पर उसका भी कर्ज पंजाबी उतार देते हैं। तो लेकिन हम पिछली सरकारों की वजह से सिस्टम की वजह से थोड़ा डेट में चले गए थे लेकिन पंजाब वापस आएगा। पंजाब बहुत बार गिरा है लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी है। की होया जे पतझड़ आई तू अगली रुत विच यकीन रखी, मैं लभ के लियाना कितों कलमा तू फुल्लां जोगी जमीन रखी।
0: मान साहब इस इंटरव्यू से ठीक पहले कुछ टाइम पहले राज्यसभा के जो MPs थे आपके वो पच के भाग गए, वो चले गए BJP में। अब सवाल ये है कि आपकी नाक के नीचे राघव चड्ढा तो पहले से ही नाराज चल रहे थे, संदीप पाठक भी चले जाते हैं, बाकी भी आपके लोग चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता ऐसे कैसे हो गया?
1: पता क्या है देखो किसी का मन कब बदल जाए ये तो कोई जान नहीं सकता इस बात को तो। लेकिन BJP का जो काम करने का तरीका, पहले ED भेजो, ED के छापे होंगे, 2-3 दिन वहाँ रेड चलेगी, फिर उनको मनाएंगे, देख लो आप BJP ज्वाइन कर लो बच जाओगे। 10 दिन पहले उस बंदे के घर पे ED आती है, 2 दिन ED सब सर्च करती है, गुड़गांव में भी, जलंधर में भी, लुधियाना में, जहाँ जहाँ भी उसके बिजनेस हैं। और 10 दिन के बाद वो BJP ज्वाइन करता है, उसको बाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दे देते हैं। तो मतलब कौन सी वाशिंग मशीन है उनके पास जिसमें डालते ही बंदा बिल्कुल क्लीन हो जाता है? तो डरा के या लालच दे कर या फिर वैसे कि हम आपको सेंट्रल में ये दे देंगे वो दे देंगे ऐसे लालच दे के ले गए। लेकिन उन जो गए हैं मैं राष्ट्रपति जी को मिला उस सिलसिले में, डेमोक्रेसी का इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि BJP के आज पंजाब में 117 में से 2 MLA हैं, 2 विधायक हैं, 6 राज्यसभा के मेंबर हैं, ऐसा हो सकता है? जिनके 2 हों उनके 6 MP हों, तो BJP को भी थोड़ा अक शर्म होती है एक पंजाब में कहते हैं ना, BJP को थोड़ा सोच लेना चाहिए था कि या तो फिर ऐसा करो इनको इस्तीफा दिलवा के कहीं राजस्थान से, बंगाल से, कहाँ से और मर्जी, कम से कम अपने MLA द्वारा तो चुने गए हों, वो हमारे MLA द्वारा चुने हुए हैं और BJP कह रही है कि हमारे पास इतने हो गए, वो तो तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं, चाहे शिवसेना तोड़वा लो, चाहे उस शरद पवार की पार्टी तोड़वा लो। मैं तो ये कहता हूँ लाइव चल रहा है ना, इसका मतलब काट नहीं सकते आप, है ना?
0: काटेंगे क्यों?
1: हाँ नहीं, इसका मतलब कैंची नहीं चल सकती। जिस पार्टी ने भी BJP के साथ अलायंस किया ना वो पार्टी खत्म भाई साहब। दुष्यंत चौटाला को पूछ लो कहाँ गई उसकी पार्टी, नवीन पटनायक को पूछ लो उड़ीसा कहाँ गई पार्टी, बिहार में नीतीश कुमार से पूछ लो, शिवसेना में उद्धव ठाकरे से पूछ लो, शरद पवार से पूछ लो, बड़े घाक सियासतदान अपने आप को मानते थे। ये तो जिसके साथ जाते हैं ना पहले उसी को ख़त्म करते हैं, तो इसीलिए मतलब इनके साथ अलायंस जिन्होंने भी किया बाद में पछताए हैं वो, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ऐसे डेमोक्रेसी का मजाक मत बनाएं। फेयर फील्ड जो मतलब एक एक जैसा ग्राउंड मिले, अगर ये मोदी जी की लहर पे जीते लहर पे जीतो हम उस हार को एक्सेप्ट करेंगे अगर पब्लिक ने उनके नाम पे वोट दिए, लेकिन वोट काट देंगे, वोट SIR में आपको दादा का बताना होगा, आप पंजाब में कैसे करोगे जी SIR? फिर आप कहोगे मेरे परदादा कहाँ थे, मेरे परदादा तो पाकिस्तान से आए थे।
0: पंजाब में भी तो हो रही है SIR की एक्सरसाइज
1: है जी,
0: पंजाब में भी तो
1: हो रही है 25 जून से, लेकिन ये मांग रहे हैं जी आपके परदादा का एड्रेस कहाँ का था। तो मेरी माँ ने अगर वोट बचानी है तो उसको पाकिस्तान सियालकोट से लेके आना पड़ेगा वो परदादा का सर्टिफिकेट, आधा पंजाब तो हमारा उधर से आया हुआ है, तो कहा ये क्या क्या बात होगी परदादा आपके कहाँ थे? ये तो सीधी सी बात है कि आपको वोट नहीं देना हमने। 27 लाख वोटर की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है बंगाल के लोगों की, और जजमेंट क्या आई? कोई बात नहीं जी आप अगली बार वोट डाल लेना, ये कोई जजमेंट है? ये मतलब ये डेमोक्रेसी है? तो मतलब ये तो लूट तंत्र है।
0: नहीं पर आपने बोला कि BJP को आंख की शर्म करनी चाहिए, पर आपको भी तो ये सोचना होगा ना कि जिन लोगों को आम आदमी पार्टी

0: ने राज्यसभा की टिकट्स दी। अगर आप बिजनेसमैन को देखो, भज्जी अब कहते हैं कि पैसे लेके सब राज्यसभा गए थे, हरभजन सिंह तो अब खुले में बोल रहे हैं।
1: नहीं चलो भज्जी से पूछ लो कि उनसे कितने पैसे लिए थे हमने, ये एक बता दें।
0: वो दूसरों की बात कर रहे हैं।
1: नहीं नहीं, नहीं अच्छा, हम भज्जी वाली मुफ्त में दे दी, कोई पैकेज में आ गई थी कोई? भज्जी से पूछ लो तेरे से कितने लिए, बाकियों के बाकी भी बता देंगे कितने कितने लिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ ना, अगर कोई मशीन आ गई ना आने वाले दिनों में, आ सकती है, AI आ गया है, सब कुछ वो सोच के भी बता देता है। अगर कोई AI के जरिए कोई ऐसा टूल आ जाए जो दिल पे लगाओ और बंदे का पता चल जाए इसके दिल में कितना खोट है, इसके दिल में क्या चल रहा है, तो सबसे पहले उसका ग्राहक मैं हूँगा, मैं कस्टमर बनूंगा उसका, मैं खरीद लूंगा। अब क्या करें, इससे पहले जोगेंद्र यादव भी थे, प्रशांत भूषण थे,
0: उनको तो नहीं दिया आपने राज्यसभा टिकट।
1: हैं जी,
0: योगेंद्र यादव, आशुतोष, प्रशांत भूषण, इनको इनकी आइडियोलॉजिकल एक कमिटमेंट थी ना, आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी। आम आदमी पार्टी ने 2022 में 17 में पंजाब की जनता को बोला कि हम बाकी पार्टियों से अलग हैं, हमें हम पे भरोसा करो। आपने टिकटें दे दी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को, उनको तो कॉम्प्रोमाइज करना ज्यादा आसान है।
1: नहीं मुझे ये बताओ, राज्यसभा में हर राज्यसभा का मतलब यही था कि जो लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आते, लेकिन उनका देश में कोई ना कोई योगदान है। अशोक मित्तल जो हमारे थे वो एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी लवली यूनिवर्सिटी जलंधर, उनके 40,000 स्टूडेंट हैं, वो एक एजुकेशनिस्ट तौर पे टिकट दी हमने। भज्जी स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते थे, उनको स्पोर्ट्स के कोटे में टिकट दी। इंडस्ट्रियल कोटे में राजेंद्र गुप्ता को और संजीव अरोड़ा तो चलो इधर आ गए, अब उनको दी। तो मतलब हर वर्ग हमारे पास भी तो वकील, जो अभी हमारे वित्त मंत्री हैं वो वकील रहे हैं, मैं एक आर्टिस्ट था, अरविंद केजरीवाल एक ऑफिसर थे इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, मनीष सिसोदिया पत्रकार थे। हमारी पार्टी में समाज का हर वर्ग का बंदा है हमारे पास, मतलब वकील हैं, डॉक्टर हैं। पार्टी ऐसी है कि कोई भी आके कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि मैं भी इस इलेक्शन से लड़ूंगा। बाकी यार राहुल, बंदे का क्या पता चलता है, आप भी तो आज तक में थे तो। अरे एक और तो बात, एक और बात बताओ, मैं जब पहली बार चुन के गया 2014 में संगरूर से, सबसे पहले सेंट्रल हॉल में इन्होंने मुझे पकड़ लिया, कहते चलो स्टूडियो चलो। नोएडा में स्टूडियो था फिल्म सिटी में, मैं मुझे पता है मेरे लाल रंग का कुर्ता मैंने पहना हुआ था, तो इन्होंने मेरे साथ शो किया, उसका नाम था सीधी बात, जो प्रभु चावला जी करते थे, है ना। तो इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि तुम तो बॉलीवुड वाले हो, तुम तो मुंबई चले जाओगे, अभी नए नए जीत के आए हो, ये सेशन पहला सेशन है, उसके बाद बॉलीवुड वाले तो कभी मिले, धर्मेंद्र भी नहीं आए, विनोद खन्ना भी नहीं मिले कहीं, अमिताभ बच्चन छोड़ गए, गोविंदा भी नहीं कामयाब हो सके, तो तुम तो बॉलीवुड वाले चले जाओगे। मैंने कहा भाई ऐसा करते हैं, अगले 5 साल तक देखते हैं, तो अगर आप इस चैनल में रहे तो मैं आपके साथ इंटरव्यू करूंगा। तो अभी पिछले दिनों जब NDTV पे मैंने इनको देखा तो मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा राहुल मैं तो वहीं खड़ा हूं यार। आप कहते हैं, आप फिर कहते हैं जब जी इनको पूछ लो तो कहते हैं वो कुछ और बात थी, वो हमारी तरक्की होती है हमारी, तो कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जहां जाओ वहां कमिटमेंट से काम करो। आजकल NDTV में हो, हमें उम्मीद है कि आप एक स्टेप आगे ही बढ़े होंगे, कोई आपकी प्रमोशन डिमोशन तो नहीं हुई होगी ना?
0: मेरे पीछे कोई ADCBI नहीं आया, मैं अपनी मर्जी से आया, ये अलग बात है, ऐसा नहीं कोई ADCBI पीछे लगी हुई थी। बट राघव चड्ढा ने 2022 का जो कैंपेन था उसको मैनेज भी किया, आपके साथ लगे भी रहे बहुत देर तक, एक यहाँ पे इमेज बनी या बनाई गई कि वो सुपर CM है। आपको लगता है कि उनके जाने का नुकसान होगा आपको आने वाले असेंबली इलेक्शन में?
1: नहीं नहीं, वो पंजाब के लोगों के साथ, मासेस के साथ उनका कोई लिंक नहीं था, वो तो मतलब ऊपर वाले राज्यसभा वाले थे। देखो एक और बात मैं बताता हूँ, राज्यसभा में ऐसे भी आ जाते हैं जो मतलब हार जाते हैं। जेतली साहब अमृतसर से हार गए तो राज्यसभा आ गए, स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई राज्यसभा में आ गई। एक समय तो ऐसा था कि 70% कैबिनेट जो मोदी साहब की पहली कैबिनेट थी वो राज्यसभा से थी। लेकिन अगर आप लोग पब्लिक ने चुन लिया, ये बहुत बड़ी बात है, चाहे गांव का सरपंच बन जाओ आप, पब्लिक द्वारा चुन लेना बहुत बड़ी बात है। राजेंद्र नगर के वोटरों ने राघव को चुन लिया था और उसको जल बोर्ड का चेयरमैन भी बना के रखा। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि जब इस्तीफा दे देते हैं तो पब्लिक दोबारा नहीं चुनती कभी।

0: बहुत से ऐसे नेता हैं हमारे देश में जो ये बात दिल में लेके ही चले गए कि काश मुझे कभी जनता चुन ले। सबसे बड़ी एग्जांपल डॉक्टर मनमोहन सिंह की है। 10 साल हमारे प्रधानमंत्री रहे, बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, बड़ी दुनिया में ख्याति थी उनकी, लेकिन कभी भी वो पब्लिक द्वारा चुने नहीं गए। अगर चुना हुआ आपने पद छोड़ दिया तो लोग इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि यार हमने आपको चुन लिया था, इससे बड़े क्या बन जाओगे। राज्यसभा इज़ अ सेलेक्टेड, लोकसभा इज़ अ इलेक्टेड। सो इलेक्टेड में जो मज़ा है ना, वो आप मेरे साथ बैठते रहे हो सेंट्रल हॉल में, तो वहाँ इलेक्टेड और सिलेक्टेड दोनों बैठते थे। लेकिन देख लेना, जो इलेक्टेड है वो चिंता में रहेगा हर वक्त कि मैंने पब्लिक में जाना है, मैंने धन्यवाद भी करना है, मैंने पैसे भी, वो जो चाहे एमपी लैड है या कोई भी को काम करवाना हो अपने क्षेत्र का, तो उसको चिंता रहती है मैं दूसरी बार जब जनता में जाऊंगा क्या मुंह लेके।
1: सही बात,
0: राज्यसभा वालों को नहीं रहती। तो शायद राघव चड्ढा जी ने ये बात नहीं पहचानी कि मैं इलेक्टेड भी था, इलेक्शन उनको सीट छोड़नी नहीं चाहिए थी राजेंद्र नगर वाली।
1: पर जैसे संदीप पाठक थे वो पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट थे, आपके एमएलएस के साथ, कैंडिडेट्स के साथ वो स्ट्रेटेजी बना रहे थे। अब जब स्ट्रेटेजिस्ट पार्टी से बाहर होता है, आपको लगता है आपका जो थिंक टैंक है, ब्रेन ट्रस्ट है, वो थोड़ा कमज़ोर पड़ता है असेंबली इलेक्शन से पहले?
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पंजाब के लोग तो खास तौर पे ऐसा नहीं सोचते। वो कहते हैं देखो पार्टी में ऐसी उथल पुथल चलती रहती है, आना जाना लगा रहता है, लेकिन वो है कि संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कल्याण सिंह, मैं छोटा था तब, लेकिन मुझे बाद में जब मैंने पढ़ा इसका सारा, कल्याण सिंह ऐसे नेता थे यूपी के, इतना प्यार करती थी जनता उनको कि जब वो जनसभा करके निकलते थे तो लोग उनके पाँव की माटी को माथे से लगाते थे, इतना ज़्यादा प्यार करते थे। वाजपेयी साहब से कोई झगड़ा हो गया पार्टी की, पार्टी में, पार्टी छोड़ दी, उसके बाद भाई साहब पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। उमा भारती, सो पार्टी संगठन, मैं तो कहता हूँ कि संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब वो जो जिनकी आप बात कर रहे हो, अभी मेरे ख्याल में आपने हमें याद करा दिया, हम भी भूल गए, चलो दैट इज पास्ट, पास्ट इवन गॉड कांट चेंज पास्ट, चलने दो, कुछ नहीं होता। पर
1: आप तो खुशी होगी कि बला टली
0: है जी,
1: आप तो खुशी होगे कि गए।
0: मुझे क्या खुशी होगी, मेरी पार्टी के मेंबर थे, मुझे दुख हुआ इस बात का कि कुछ बहुत, जैसा कि आप कह रहे हो कि बहुत लोग, उन लोगों के साथ मैं बहुत क्लोजली फैमिली मेंबर के तौर पे हमने काम किया, उनके साथ पारिवारिक संबंध थे, लेकिन पता नहीं कैसे उनके मन में क्या आया, चलो भला होया लड़ नेड़ों छुट्टिया, उम्र ना बीती सारी, लगदी नालों टुटदी चंगी, बेकदरां दी यारी।
1: मुझे पता था कि भगवंत मान ना मेरी थोड़ी टांग खींचने वाले हैं, लेकिन इनसे पंगा लेना बड़ा खतरनाक है, पंगा लोगे उल्टा ही पाएगा, तो पंगा लेना ही नहीं है। आपको जो बोलना है आप बोलो, मैं अपने सवाल पूछूंगा आपसे हाजिर जवाबी में, तुकबंदी में, तो पंगा लेना ही नहीं है।
0: पता क्या है, ये भी पंजाबी है ना, इसके नानके पटियाला में है, तो इसको मुझे पता है, इसकी सारे पासवर्ड मुझे पता है इसके।
1: ये अलग से आप बोल रहे हो कि सबके पासवर्ड पता है, लोग बोलेंगे कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग, की सरकार एकदम सब पे सीआईडी कर रही है। सीआईडी कर रही थी और आपके खुद के एमपी निकल गए, आपको पता नहीं चला क्या सीआईडी है आपकी?
0: हम तो काम की राजनीति करते हैं, हम अपने काम लेके जाएंगे 2027 में लोगों के पास, 5 साल के जो काम किए हैं। और अरविंद केजरीवाल ने 2020 की इलेक्शन से 2 महीने पहले टीवी पे आके बोल दिया था दिल्ली वालों को कि अगर मेरे काम पसंद आए तो वोट डाल देना, वरना ना डालना। ऐसा बोलने के लिए जिगरा चाहिए, वरना हर, अभी तक मोदी जी कह रहे हैं 12 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री बने, अभी तक कह रहे हैं देश बचाना है, देश बचाना है, किससे बचाना है बता तो दो, 6-7 बार देश बचा चुके हैं, अभी भी वो देश बचाने के लिए विदेश गए हुए हैं, ठीक है ना। वो हम लोगों को तो कह रहे हैं कि विदेश यात्रा बंद करो, आप ब्याह शादी में सोना मत पहनो, आप तेल मोटरसाइकिल में, गाड़ी में तेल मत डलवाओ, घर से काम करो, और खुद ही निकल गए उसी दिन ही, उधर नीदरलैंड चले गए, नॉर्वे चले गए।
1: बोला कि कोई ऐसी ट्रिप हो जिससे देश को फायदा हो उसमें जाओ, सिर्फ फिजूल में मत जाओ, छुट्टी मनाने मत जाओ, ये
0: अच्छा एक, हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं 2 बार विदेश गया हूँ, 1 बार साउथ कोरिया और जापान, अभी नीदरलैंड और फिनलैंड, दोनों बार आके मैंने एक एक दिन की जितनी मीटिंग्स थी एम्बेसी ने करवाई जो हमने की, पूरा ब्यौरा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीवी पर पूरा ब्यौरा दिया, ये इनके विजिटिंग कार्ड हैं, ये फलां कंपनी के मालिक हैं, ये पंजाब में 200 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गए, ये जी। प्रधानमंत्री जी ने कभी विदेश से आके पार्लियामेंट में, या फिर उनके

0: किसी रिप्रेजेंटेटिव ने प्रेस को ये ब्यौरा दिया है कि जब हम गए थे क्या क्या समझौते होके आए हैं? बताइए, आप तो बड़े पत्रकारों में हैं, आपको तो प्रधानमंत्री के साथ जाना चाहिए था ना। मनमोहन सिंह साथ लेके जाते थे, पूरा प्लेन भर के जाता था। ट्रंप भी अब जाता है, जब एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो एयरफोर्स वन में भी करता है ना। कौन जाता है जी प्रधानमंत्री के साथ? आके कोई डिटेल देते हैं कि हमने नीदरलैंड में क्या किया, नॉर्वे में क्या काम
1: था? सुबह से लेकर रात तक मीटिंग चलती रहती है ना, ऐसा थोड़ी कुछ छिपके कर रहे हैं।
0: वो बताना, आके उनका रिप्रेजेंटेटिव मंत्री जी हैं उनके पास, वो प्रधानमंत्री के दौरे का पूरा ब्यौरा दे ऑपोजिशन को, देश को दे ब्यौरा कि हम जी इतने करोड़ के समझौते हुए हैं। पता ही नहीं चलता कि क्या करके आए हैं वहाँ, पता नहीं। और देशों के नाम नहीं पता भाई साहब, हमने भी ज्योग्राफी तो हमने पढ़ी हुई है, मतलब ऐसे ऐसे देशों में जाते हैं जिनका नाम ही नहीं सुना कभी, ओलंपिक भी देखते रहते हैं, वहाँ तो छोटे छोटे पपुआ गिनुआ चचुआ चिचुआ हाँ कनगेशिया बगलेशिया टकलवेशिया। और मैंने खबर पढ़ी पिछले दिनों, कहते जी पपुआ गिनुआ में गए हैं हम। अच्छा जी, पपुआ गिनुआ का सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड प्रधानमंत्री को मिल गया। अच्छा जी, वेरी गुड। उनकी पॉपुलेशन कितनी है? कहते 9250। मैंने कहा इतने बंदे तो JCB देखने आ जाते हैं हमारे यहाँ, जहाँ 140 करोड़ रहते हैं राहुल, वहाँ क्यों नहीं रहते वो?
1: तो आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है अगर वो जा रहे?
0: इतना भी तो एक साल ना कोरोना आ गया, वरना धरती के 3-4 चक्कर लगा चुके होते अभी तक। मतलब कोई फायदा तो हो। एक मिनट, इतने देशों में गए, प्रधानमंत्रियों के साथ जफ्फी डालते हैं, इधर तो ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरा माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप लाना। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक भी मुल्क ने हमारा साथ दिया? बताइए,
1: अमेरिका ने
0: साथ दिया? अमेरिकन तो अनाउंस किया कि बंद करवा दिया। बताइए एक मुल्क बता दीजिए, मंगोलिया जाने का क्या फायदा हुआ? मंगोलिया ने कभी साथ दिया? तुर्की ने उनको ड्रोन दिए, तुर्की गए, तुर्की ने ड्रोन दिए उनको। अभी भी हम किसके साथ हैं? पता नहीं कैसी जंग लगी हुई है ये खाड़ी मुल्कों की। अमेरिका ने हमला किया है, हमला ईरान पर हुआ है, कुटाप्पा जो हो रहा है वो इसराइल का हो रहा है, बिल्डिंगें लेबनान की गिर रही हैं, बर्बाद दुबई हो गया, बेइज्जती इंडिया की हो गई, चढ़ाई पाकिस्तान की हो गई। ये क्या हो रहा है यार?
1: नहीं, बेइज्जती क्यों हुई
0: हैं?
1: बेइज्जती क्यों हुई
0: कि पता नहीं हमारा रशिया से कहते तेल लेने की, मैं तो आपको इजाजत नहीं दूंगा, तो रशिया से तेल क्यों नहीं लेते अभी? वो अभी रशिया से तेल क्यों नहीं खरीद रहे?
1: टाइम से तो ले ही रहे थे ना, अभी भी
0: 7 रुपए पिछले 10 दिन में 7 रुपए लीटर बढ़ा दिया, 2 रुपए का जब उठते हैं 2 रुपए 71 पैसे से बढ़ जाता है, जब सुबह जागते हैं। आज सोएंगे किसी और रेट पे, कल जागेंगे किसी और रेट पे। तो आप रशिया से क्यों नहीं लेते? क्या डर है अमेरिका का? कोई अमेरिका का डर है? और अमेरिका क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भारत को मैं इजाजत देता हूं कि वो 1 महीना रशिया से तेल खरीद। इजाजत वो देगा? व्हाइट हाउस चलाता है। हम तो बिशप गुरु बनने चले थे, बिशप चेले बन गए हम। जो वो कहते हैं वही मानते हैं हम। क्या कमजोरी है ऐसी प्रधानमंत्री जी की कि जो ट्रंप की इतनी बात माननी पड़ती है कि वो आधा घंटा पहले ट्वीट करता है, हम कहते हैं हाँ जी बंद हो गया ऑपरेशन।
1: आप ये भी तो देखो कि बाकी देशों में जितना तेल का दाम बढ़ा है खाड़ी में जंग शुरू होने के बाद, हिंदुस्तान में उससे बहुत कम बढ़ा है, और कई महीने तो बढ़ा नहीं था, अब भी बढ़ा है। जितना कि दुनिया के बाजार में तेल का दाम बढ़ा, उससे तो बहुत छोटा हिस्सा इंडिया में बढ़ा है।
0: देखो जिस तरीके से आप काउंटर कर रहे हो ना, ये तो वो बात हो गई। एक बंदे से किसी ने पूछा, कहते जंगल में अगर तू जाए तो तेरे पीछे शेर पड़ जाए, कहते जी मैं उसको गोली मार दूंगा। कहते तेरे पास कारतूस ना हो, कहता मैं बंदूक का बट मारूंगा उसको सर में। कहता बंदूक ना हो, कहता मैं चाकू निकालूंगा गला काट दूंगा। कहता अगर तेरे पास चाकू भी ना हो, कहता मैं जेब से लाल मिर्ची निकालूंगा शेर की आंखों में डाल दूंगा। कहता अगर तेरे पास लाल मिर्ची भी ना हो, कहता मैं भाग के ना एक पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। कहता अगर शेर तेरे पीछे पेड़ पे चढ़ जाए तो, उसने कहा यार जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले तू बता तू किसकी तरफ है, तू शेर की तरफ है या मेरी तरफ है?
1: मैं किसी की तरफ
0: नहीं। मैं मोदी जी के खिलाफ कोई बात बोलता हूँ काउंटर करने लग जाते हो?
1: नहीं, मेरा काम है सवाल पूछना।
0: किसकी तरफ हो?
1: मैं, अरे क्यों, मेरा काम है सवाल पूछना। मैं ये थोड़ी कि मान साहब छा गए, मान साहब छा गए, इसलिए थोड़ी
0: मैं सवाल पूछो,
1: सवाल
0: जवाब को डिफेंड करना थोड़ी
1: नहीं। अरे सर, तो इसीलिए तो इंटरव्यू बनता है ना, फिर मैं बैटिंग करूंगा आप बॉलिंग करोगे, आप बॉलिंग करोगे बैटिंग करोगे।
0: तो चलो मुझे ये बता दो सिलेंडर की लाइनें लगी हुई हैं। बंगाल की इलेक्शन में अमित शाह जी ने कहा था भारत के पास तेल का प्रॉपर जो स्टॉक है, LPG का प्रॉपर स्टॉक है, कोई तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट आया तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, और ये आप तेल की जो है कीमतों का सामना करना पड़ेगा। आपको हर बात हर

0: कमजोरी अब उस जंग के नाम लगाएंगे, उस जंग के कंधे पर धर रख के अभी चला रहे हैं। हम भी पूछ रहे हैं, नेशनल लेवल की पार्टी हमारी, हम पूछ रहे हैं कि आपने आप हमें बता दीजिए ना कि तेल कितने दिन का है। आप कहते हैं मैं अपने काफिले में से 2-3 गाड़ियां कम कर दूंगा, तुम आप घर से मत निकलो, तुम ये ना करो, सोना सोने की आपने बोल दिया कि सोना मत खरीदो, कितने लोग बेरोजगार हो गए जी, कितने लोग मतलब ये प्रधानमंत्री का बयान होना चाहिए सोना मत खरीदो।
1: नहीं, कौन बेरोजगार हुआ
0: है जी?
1: बेरोजगार
0: जो सोने की दुकानों वाले
1: बिक्री कम होगी सर, बेरोजगार। अब ज्यादा अतिशोक्ति मत करो,
0: प्रधानमंत्री कहेगा कि सोना मत खरीदो, पहले कहते थे ये मत खाओ, फिर कहते भी ये मत पहनो, आपके घर के फ्रिज तो चेक करने आ जाते हैं कि क्या क्या खा रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना। मतलब डेमोक्रेसी है अगर बिगेस्ट अच्छा, डेमोक्रेसी
1: ये बड़े स्मार्ट है, ये ले गए हमें पूरी दुनिया की सैर कराने के लिए। पंजाब में इलेक्शन होने वाला है, आप जा रहे हो गल्फ वॉर की। अच्छा बताओ ये कि एक जो बहुत बड़ा मुद्दा बनता है वो ये कि भगवंत मान एक केवल मुखौटा है, मास्क है। आरोप ये लगता है कि सरकार अरविंद केजरीवाल चलाते हैं, जब से उनकी दिल्ली की सरकार गई तब से ये चार्ज लगता है कि सुपर सीएम वो हैं, पर्दे के पीछे से क्या करना है क्या नहीं करना ये फैसले अरविंद केजरीवाल ने।
0: नहीं वैसे मुझे नेशनल पार्टी है तो हमारे भी जो जो पंजाब का प्रभारी होगा, दिल्ली से आते हैं मनीष सिसोदिया हैं, ठीक है ना। अब कांग्रेस है तो मल्लिकार्जुन खड़गे मोगा से हैं, तो मुझे बताइए जो जो पहले हरीश चौधरी आए थे वो बागा पुराना से थे, ठीक है ना। अभी जो बीजेपी के प्रभारी आते हैं नितिन नवीन क्या मतलब मलिकोड़ला से हैं, तो मतलब नेशनल पार्टी हमारी भी, हमें नेशनल पार्टी कंसिडर करो। अब हमारे भी तो वो हाँ डिसीजन मेकिंग में कभी उन्होंने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया।
1: सच बताओ,
0: मैं आप लोग बता देंगे सच 2027 में, फिर आप ही कहोगे ये देखिए रुझानों में आम आदमी पार्टी ने मतलब बहुमत हासिल कर लिया है, रुझानों में बहुत बहुमत हासिल कर लिया, आप कहोगे। आप शर्त लगा लो उस दिन की तरह, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ।
1: पंजाब के सरकार के जो फैसले होते हैं, अगर 100 फैसले होते हैं उनमें अरविंद केजरीवाल कितने फैसले लेते हैं, भगवंत मान कितने फैसले लेते?
0: सारे फैसले पंजाब के सीएम लेते हैं,
1: और पीछे बताते कितने हैं कि ये करो वो करो।
0: नहीं अगर अगर वो करेंगे भी मैं आपको क्यों बताऊंगा फिर। मुझे ये बताइए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है?
1: मोहन यादव।
0: मोहन यादव किसके नाम पे लड़े थे?
1: मोदी जी के नाम।
0: ना लाडली लाडली बहना किसकी थी?
1: शिवराज
0: चौहान। उसके नाम पे लड़े, उसको ले गए उधर, चलो जी पता नहीं कौन। राजस्थान में जिससे पर्ची खुलवाई थी वो कौन थी? वसुंधरा सिंधिया। उसके नाम पे लड़े, उसी से पर्ची खुलवाई।
1: उनके नाम पे नहीं लड़े,
0: मतलब
1: काम ऐसे ऐसे तो बीजेपी पार्टी के तौर पे लड़ी ना।
0: बीजेपी विदाउट फेस जाती है, हम फेस के साथ जाएंगे। जो अगर फेस लोगों को पसंद आएगा तो ही वोट डालेंगे ना, तो फिर अगर अगर उन्होंने कोई और फेस लगा रखा है मेरे पे तो लोग कैसे यकीन करेंगे। बिल्कुल गलत बात है, प्रोपेगंडा गलत हो रहा है। दिल्ली और पंजाब हम आपस में पार्टी जो, मैं तो गुजरात भी जाता हूँ, मैं भी गुजरात जाता हूँ, गुजरात प्रचार करने के लिए जाते हैं। हम अच्छी अच्छी स्कीमें जो पंजाब की गुजरात वालों को भी बताना है। हमारे पास 5 MLA गुजरात में भी हैं, 1 डोडा में जम्मू कश्मीर में भी है, 4 हमारे MLA गोवा में भी हैं। हमारी नेशनल पार्टी है तो हमें भी नेशनल पार्टी कंसिडर करो ना। हमारे फैसले भी कई बार हम दिल्ली बैठ के भी करते हैं फैसले, हाई कमांड है, PAC है, प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी है, हम NGO थोड़ी हैं अब। तो इसलिए ये मेरे ख्याल में पंजाब के लोगों के लिए मुद्दा नहीं है।
1: इसका एक काउंटर है, वो ये कि पहले अरविंद के, आप लोगों ने सबने सुना ही होगा कि पहले अरविंद केजरीवाल बहुत हावी हो रहे थे, आजकल भगवंत मान थोड़ा पुशबैक कर रहे हैं। ये दूसरा
0: आप ही मुझे पीछे कर लेते हो, आप ही पुश कर लेते हो, आपकी खबरों में होता है ये, ऐसा है नहीं। पंजाब सरकार स्मूथली चल रही है और लोग पंजाब के खुश हैं। 60-60 साल बाद पानी मिला है कहीं कहीं पर आके, और पंजाब के लोग जो हैं वो इतने खुश हैं कि इतने वादे जो पार्टी ने किए और सारे वादे पूरे करके पार्टी बैठी है। अब तो हम वादों के अलावा काम कर रहे हैं, वादों के बिना काम कर रहे हैं।
1: आपने ड्रग्स पे एक बड़ा कैंपेन शुरू किया, लेकिन मैं लोगों से पूछ रहा था कि जो एंटी ड्रग्स कैंपेन है वो कैसा चल रहा है, तो फीडबैक ये मिला कि जो ड्रग पेडलर है वो तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, वो नहीं पकड़ा जाता है।
0: बिल्कुल ऐसा है कि हमारे अभी कन्विक्शन रेट हमारा 87% है, पंजाब देश में सबसे ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ा एक इनका जाल बिछा हुआ है। वो क्या करते हैं, जो एडिक्टेड हैं उनको ही ज़्यादा देते हैं कि 2 ग्राम आपके लिए, 7 ग्राम आपको टोटल दे रहे हैं, 4 ग्राम आप 2-2 ग्राम के लिए आप आगे 2 ग्राहक बनाओ, आपका फ्री दे देंगे। ऐसे चेन रिएक्शन चलता है। हम उसमें बहुत कामयाब हो चुके हैं यहाँ तक पहुँचने में। अभी एक ड्रग का सरगना

0: जेल में रह के आया 6-7 महीने, ठीक है, अभी जमानत हुई है। NDPPS एक्ट को हम और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, हमारी होम मिनिस्ट्री के साथ बात चलती रहती है। अब युद्ध नशे विरुद्ध जो जब चलाया है, प्रॉपर्टीज़ उनकी डिमोलिश की हैं, तो अब शरेआम बिकना बंद हो गया। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही बंद हो गया, शरेआम बिकना बंद हो गया, लेकिन जो चोरी या कुछ ऐसे इस तरह से चलता है जो पाकिस्तान से आता है, या आपको सुन के ताजुब होगा कि पाकिस्तान से तो कम आता है, गुजरात के पोर्ट पे ज़्यादा आता है। 3000 kg हमने मुंद्रा पोर्ट से पकड़ा है, कोलंबिया से आ रहा था, 3000 kg पता नहीं कहाँ गया। आपको पता है कि कैग की रिपोर्ट है, गुजरात पुलिस ने कहा है 2200 किलो ड्रग्स जो पकड़ी गई थी उसको चूहे खा गए। मतलब चूहे कैसे खा गए ड्रग यार? मैंने कहा चूहे कहाँ हैं? कहे जी मर गए होंगे। मैंने कहा डेड बॉडी दिखा दो चलो उनकी। 2200 किलो ड्रग जो है वो ऐसी खुर्द-बुर्द कर दी, चूहों के नाम डाल दिया, चूहे खा गए। मूवीज़ में भी आता है अब तो ये कि चूहे खा जाते हैं। तो मतलब ये नेशनल प्रॉब्लम है, दिस इज़ नॉट ए पंजाब इशू, के कल पंजाब का इशू।
1: मुझे याद है जो हमने इंटरव्यू किया था आपका संगरूर में पिछले असेंबली इलेक्शन से पहले, मैं उसको देख रहा था यहाँ आने, एक ओपन एयर गाड़ी में आप घूम रहे हो, आपके बाजू में हम लोग खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे हैं, और आपने कहा कि अगर मुझे सरकार में आने का मौका मिलता 3 महीने के अंदर में ये जो उड़ता पंजाब की जो प्रॉब्लम है, पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम है, उसको फिक्स कर दूंगा, ये आपने वादा किया।
0: नहीं पते, इसमें कई लेयर में काम किया हमने। अगर हम सप्लाई चेन तोड़ते हैं तो लाखों वो जो एडिक्टेड हैं, वो तो मरीज़ हैं ना, उनको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, वो विद्रॉल सिम्टम में आएंगे, वो तड़पेंगे, फिर उनके लिए हमने रिहैब सेंटर बनाए, पहले रिहैब सेंटर को अपडेट किया, उसके बाद हमने पंजाब पुलिस में बहुत सी बदलियाँ की। हमने 20-20 साल से वहीं पुलिस वाले तैनात थे, उनकी यारियाँ रिश्तेदारियाँ वहीं पे थी, वो भी मिले हुए थे लोग ड्रग स्मगलर को, जो उनके गांव में बेचने आता था उसको थाने में पकड़ा के जाते थे, लोग बाद में गांव पहुंचते थे, वो पहले पहुंच जाता था, थाने से जमानत हो जाती थी, कानून थोड़ा कमज़ोर था। अभी हमने कानून में भी थोड़ा सोध अमेंडमेंट की है, तो उसके बाद फिर हमने सप्लाई चेन तोड़ने का फैसला किया है। अब सप्लाई चेन पे हम लगे हुए हैं, और होपफुली हम स्पोर्ट्स या कुछ ऐसी एक्टिविटियाँ, नौकरी यूथ को हम, ताकि वो दोबारा ना उस तरफ जाएं।
1: एक जो दूसरा आरोप लगता है वो ये कि यहाँ पे एक्सटॉर्शन के बड़े फोन आते हैं, उद्योगपति कहते हैं कि कोई भी, मतलब गोल्डी ब्रार हो, लॉरेंस बिश्नोई, गैंग के नाम पर, पता नहीं उस गैंग से फोन आ रहे हैं।
0: पहले वाली सरकारों ने भी इसमें बहुत योगदान दिया है, उन्होंने गैंगस्टर अपनी इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करके उन्होंने छोड़ दिए, है तो हमारे ही लड़के हैं वो, फिर वो ना तो दलदल में फंस गए, ना तो निकलने के लायक रहे कि हम इधर से कहाँ कैसे निकलें। तो फ़ोन आते हैं, लेकिन हम लोगों को अब यकीन है, लोग पुलिस के पास आते हैं, हमने कुछ टोल फ्री नंबर भी दिए हुए हैं कि अगर आपको कोई कॉल आती है हमें बताइए, कोई आईपी नंबर या कोई उसका जो भी, ज़्यादातर पुर्तगाल, दुबई, मलेशिया से भी हम पकड़ के लाए हैं कुछ।
1: नहीं पर आप ये सोचिए ना, लोगों को ऑब्वियसली आपकी पुलिस पे या लॉ एंड ऑर्डर पे शक है, इसीलिए वो एक्सटॉर्शन को दे भी रहे, वरना पुलिस पे विश्वास हो
0: नहीं
1: तो वो दे ही ना किसी को पैसा।
0: ये ड्रग और ये एक्सटॉर्शन के फोन, ये क्या हमारी सरकार में शुरू हुए? उन्होंने बढ़ाया, हम तो कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी, हम कोई पुष्टपनाई नहीं करते कि हमारी फलां फलां गैंगस्टर के साथ कोई बातचीत होती है। ये तो अकाली दल तो गैंगस्टर को टिकटें दे रहा है, अभी तरन तारण में क्या किया था, गैंगस्टर के रिश्तेदार को टिकटें दी थी, आज भी गैंगस्टर को टिकटें देने में सबसे ज़्यादा अकाली दल है। अकाली दल का नाम लेके वो करते हैं कि हम अकाली दल, और उनका खुद के नाम लेके कत्ल किए हुए हैं, कि कत्ल करने के बाद उसकी छाती पे पांव रख के जिंदाबाद के नारे लगाए हुए हैं। तो उन्होंने जो कांटे बोए थे उनको हम चुग रहे हैं। हम, मेरा ना तो किसी बस में हिस्सा है, ना किसी रेत की खड्ड में हिस्सा है, ना किसी ढाबे में हिस्सा है, ना होटल में हिस्सा है, ना समोसे की रेहड़ी में हिस्सा है। मेरा हिस्सा है तो पंजाब के 3.25 करोड़ लोगों के दुख सुख में हिस्सा है, अदरवाइज हम तो, हमें तो आने की ज़रूरत ही नहीं थी पॉलिटिक्स में। हम क्या कोई इनसे कोई पैसा कमाने आए हैं? हम इस धंधे को प्रोफेशन बनाने नहीं
1: आए। हम करप्शन को ख़त्म कर देंगे, लेकिन अगर आप लोगों से बात करो पंजाब में, उनसे बात करो, कहते नहीं पेटी करप्शन तो अभी भी है, अभी भी RTO हो, लैंड रजिस्ट्री हो, पैसे तो देने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान मान के राज में।
0: 70 साल का उलझा हुआ ताना है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हमने बहुत अफसर सस्पेंड किए हैं, विजिलेंस के चीफ तक सस्पेंड किए हमने, ये फैसले लेने के लिए दलेरी चाहिए, जिगरा चाहिए उसके लिए। तो करप्शन है या जो जितनी भी सोशल इवल्स हैं उनको खत्म करने में हम लगे हुए हैं, हमारी नीयत पे खोट।

0: नहीं है। सफलता देर मिले, सवेर मिले, अंधेर मिले, लेकिन मिलेगी, लेकिन हम नीयत से काम कर रहे हैं।
1: अच्छा, एक सवाल है, वो सवाल लोगों के जहन में है, अब आप बुरा मत मानना, लेकिन सवाल तो पूछना पड़ेगा। सवाल वो है कि जैसे जब आप असेंबली में आते हैं, आपके अपोनेंट्स कहते हैं कि आप शराब पी के आए, ये चार्ज आपका असेंबली इलेक्शन में भी लगा, आप पंजाब की जनता को, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, उनको बताइए कि ये जो चार्ज है बार बार भगवान मान पे,
0: उनके पास और कोई मुद्दे नहीं है, उनके पास और इल्ज़ाम क्या है। मुझे 12 साल हो गए, 2014 में पहली बार जीता था मैं, 2012 में पॉलिटिक्स में आ गया था, एक इलेक्शन पहले भी लड़ा, 14 साल हो गए, 14 साल से वो यही कह रहे हैं कि भगवंत मान तो दिन रात शराब पीता है। आपका कोई दोस्त, आपका कोई मित्र, आपका रिश्तेदार कोई, जो 14 साल से लगातार शराब पी रहा है दिन रात, वो जिंदा है? आपका बता दो भाई साहब, कोई जिंदा है क्या? मतलब मैंने मंडी गोविंदगढ़ से लोहे का लिवर लगवाया हुआ है, ठीक है, ये उनका, उनके पास और कुछ है ही नहीं ना। फिर इल्ज़ाम लगा दो, ये तो ऐसे मैं बोल देता हूँ, कौन सा कंडेम ही करेगा बाद में, अगला बंदा सफाई देता रहेगा, है मैं बोल देता हूँ वो ड्रग लेके आता है, कोई कहता है सुखबीर बादल अफीम खाता है, बोलते हैं उसको सुखा अमली बोलते हैं, वो बताए, ठीक है ना, वो कहते हैं जब भी कोई गलत मलत बयान देता है, मैं अपने पिता को पिता समान तो नहीं कहता ना, वो तो अपने पिताजी को कहता है मेरे पिता समान है, पिताजी को उठ के बोलना पड़ा था पिता समान नहीं हूँ पिता हूँ। उनका एक कांग्रेस का प्रधान है, वो 12-5-48 बोल रहा है, ठीक है ना, वो मैथ कोई पता नहीं किधर लेके जा रहा है, वो क्या खाते हैं जी मुझे पता नहीं चल रहा। तो ये तो पर्सन, वो मेरी माँ के बारे में बोलने लगते हैं, फिर मेरी बहन के बारे में बोलते हैं, मेरी वाइफ के बारे में बोलते हैं, इनके पास और कुछ है ही नहीं, गालियाँ देते रहते हैं। लोग कहते हैं यार इलेक्शन आने दो, पता चल जाएगा। इससे पहले भी 2017 और 2022 में यही मुद्दा बनाया था, तो लोगों ने, पहली बार हुआ है कि लोगों ने 92 out of 117 दी, इतना बड़ा मैंडेट पहले किसी पार्टी को
1: चैलेंज किया कि ब्लड टेस्ट करा लो,
0: क्यों करा लें उनके कहने पे, वो करवा लें, वो तो स्मगलर हैं, उनके उनके पिताजी तो सोने के बिस्कुट स्मगलिंग करते थे, वो तो उनका करा लेते हैं ब्लड टेस्ट, हम जो ड्रग बांट रहे हैं देश में। सो इसलिए ये इनका सिर, ये राजनीति या ये मुद्दा नहीं है पंजाब का, मुद्दे का पता तब चल जाएगा ना जब लोगों ने मुझे बोल दिया कि भगवंत मान हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तू काबिल नहीं है पंजाब चलाने के, 2027 में पता चल जाएगा, आ जाएं बात चल, पता चल जाएगा 2027 में क्या रह गया, नवंबर दिसंबर में कोर्ट लग जाएगा, यूपी के साथ होती है इलेक्शन, इसीलिए यूपी में कुछ ज़्यादा राउंड होते हैं, हमारे फरवरी के फर्स्ट वीक में इलेक्शन होती है, तो पता चल जाएगा क्या फरवरी
1: में। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट है, उसको लग रहा है कि जैसे हम बाकी स्टेट्स में जीत रहे हैं, पंजाब में भी बीजेपी कुछ कर सकते।
0: कैसे जीतते हो आपको तो पता होगा,
1: नहीं नहीं वहाँ पे इतना बड़ा बहुमत आया,
0: नहीं नहीं आप तो बिहार भी जाते रहे हैं उनके,
1: तो यहाँ पश्चिम बंगाल भी गया था,
0: हाँ हरियाणा में भी थे, कैसे जीतते हो
1: आप बताओ, कैसे जीते?
0: पहले लड़ाई करवाते हैं दो दो दो समुदाय में, फिर एक समुदाय की तरफ हो जाते हैं, डराते हैं, बम धमाके भी होते हैं, दंगे भी होते हैं, नू में दंगे हुए, मणिपुर जल गया, बिहार में लड़ाई हुई, बंगाल में कत्ल हुए, तो इसका मतलब पंजाब में भी ऐसा कराएंगे?
1: क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी ऐसी लग रही कि इस वक्त एक सिख फेस को वो आगे करेंगे, वैसे ही आपके पार्टी के कुछ राज्यसभा MPs आ गए और वो अभी गांव में उतनी नाराजगी नहीं है जैसे पहले दिक्कत हो रही थी कैंपेन करने में, अब वैसा नहीं है जैसे पहले था, बीजेपी को लग रहा है कि इस बार पंजाब में वो अच्छा कर सकता है। आप इस स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हैं, क्या लिख रहे हो आप
0: बीजेपी को 2027 में? पहले हमारा रिकॉर्ड है आपके साथ ऐसा लिखने का,
1: लाओ एक कैमरा लाओ भाई, कैमरा कहें, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, क्या लिख रहे हैं आप? कह रहे हो कि बीजेपी को 2027 में एक से दो सीट,
0: वो भी पठानकोट साइड, साइन भी कर दिए,
1: क्यों आपको लग रहा है कि ऐसे आएंगे?
0: मैं लोगों में रहता हूं जी, ये लिख लेना, रोक लो, रोक लो, और कांग्रेस कांग्रेस का लिख दूं,
1: कांग्रेस का भी लिख दूं, किन्नी दे रहे हो तुसी कांग्रेस को?
0: सिंगल फिगर,
1: ठीक ठीक लगा लियो थोड़ा जा,
0: मैं करता हूं 129
1: कांग्रेस को,
0: साइन इसके नीचे भी कर दूं, ऊपर वाले चल जाएंगे,
1: एक ऑटोग्राफ चल जाएगा, हाँ। नहीं वो अकालियों को, जीरो
0: ले लो,
1: ठीक ठीक तो लगा लो, पूरी फैमिली गायब।
0: देखिए भाई इतना तो मुझे घर पे पड़ता है, इतना ही रेट लगेगा अपना।

0: बताया नहीं आपने पिछली बार
1: 92 बाकी जितनी बच गई वो दे दो
0: सारी। आपका मेन कंपटीशन आपके हिसाब से अगले इलेक्शन में किससे होने, ये अकाली को 0 दे रहे हैं, कांग्रेस को 1-9, बीजेपी को 1-2, ऐसा ही दिल्ली के इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी ने किया था। लिख के लिख लो, फिर दिल्ली में क्या हुआ?
1: एक बार लिख के भी दिया था तो आपको आज तक पे, श्वेता ने किया था ना कि चन्नी भी हारेगा दोनों जगह से, कैप्टन भी हारेगा, सिद्धू भी हारेगा, मजीठिया भी हारेगा, बादल दोनों बाप बेटा हारेंगे, मनप्रीत बादल भी हारेगा, हारे ना।
0: पर उस टाइम पे आप ऑपोजिशन में थे, अब आपका जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसका टेस्ट है ऑपोजिशन में,
1: ठीक है ना, इसका टेस्ट का रिजल्ट तक तो वेट करो, अभी क्यों कंडेम कर रहे हो,
0: इसको सेव कर लेना
1: भाई, सेव में आ गया,
0: सेव हो गया, उस दिन निकालेंगे ये,
1: सेव हो गया,
0: हां सेव हो गया, हां कैमरे पे भी आ गया,
1: हां कैमरे पे सेव हो गया,
0: मैं भी सेव कर लूंगा।
1: तो अगर आप उस समय एनडीटीवी में हुए तो मेरे इंटरव्यू कर लेना
0: यार, अभी तो आया हूं, ये बताओ पंगा कर रहे हैं,
1: कहीं भी हुए, कहीं भी हुए, हां तरक्की हो सकती है आपकी,
0: जो प्लस थी अभी इस साल तरक्की करनी तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो भी हो आप तो वैसे सब मिक्स एंड मैच।
1: नहीं, मैं इस समय आम आदमी पार्टी की तरफ से लिख रहा हूँ, और मैं इंटरव्यू भी आम आदमी पार्टी की तरफ से दूंगा, आप जब जहां भी होंगे इंटरव्यू आपके साथ करना ही करना, मैंने
0: डन, इंटरव्यू होना चाहिए, वो जरूरी भी है। नहीं तो आपको लग रहा है कि बीजेपी के कुछ पहले से बेहतर करने के,
1: पब्लिक, बीजेपी पब्लिक में कब गई है, बीजेपी जितना एंटी पंजाब बीजेपी चल रही है इस वक्त, कभी कहते हैं चंडीगढ़ को हम विधानसभा बना के चंडीगढ़ को दिल्ली की तरह यूटी बना देंगे, पंजाब से छीन लेंगे, कभी कहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ हमारी है, वो उसका सेनेट जो है हम बदल देंगे, कभी कहते हैं बीबीएमबी के द्वारा हम भाखड़ा नंगल का पानी हरियाणा राजस्थान को देंगे, कभी कहते हैं पंजाब की झांकी हम नहीं दिखाने देंगे, आरडीएफ का हमारा पैसा 9,000 करोड़ हमारा रोक रखा है, हैं बैट का हमारा एनएचएम का नेशनल हेल्थ मिशन का वो पैसा नहीं दे रहे, कोई तो ऐसा
0: तो
1: काम हो
0: नहीं है फिर पंजाब के लिए, अगर डबल इंजन सरकार बन जाए तो पैसे आने में प्रॉब्लम नहीं होगी, जो आप बोल रहे पैसे नहीं आ रहे अभी।
1: नहीं नहीं, जो हमारे बन रहे हैं, हमारा राइट है, जो हमारा आरडीएफ का पैसा है वो किस मुंह से आके वोट मांगेंगे, और मुझे ये बता दो बीजेपी में बीजेपी का नेता कौन है, सारी कांग्रेस जो है कड्डी वड्डे छड्डे सब इतने इधर आ गए, कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री था कैप्टन अमरिंदर वो बीजेपी में माइग्रेशन है ना, मनप्रीत बादल जो वित्त मंत्री था माइग्रेशन बीजेपी में, रवनीत बिट्टू जो कांग्रेस में था माइग्रेशन, फतेह जंग बाजवा प्रताप बाजवा का सगा भाई माइग्रेशन, ठीक है ना, सुनील जाखड़ उनका प्रधान था माइग्रेशन, तो मतलब कौन है उनके पास जो अपना है?
0: नहीं नहीं, बट यही तो माइग्रेशन से पश्चिम बंगाल में सरकार बन गई, वो शुभेंदु अधिकारी
1: पश्चिम बंगाल और पंजाब में फर्क है ना, ये अगर ये जिताने वाले होते तो 2022 में ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस को जिता देते, ये सारे मनप्रीत बादल भी कांग्रेस में था, कैप्टन भी कांग्रेस में था, सुनील जाखड़ भी कांग्रेस में था, तो ये उस समय कांग्रेस को, ऐसे थोड़ी होता है कि लोग ऐसे चेहरा देखेंगे और वोट डाल देंगे, पंजाब के लोग हैं पॉलिटिकली अवेयर हैं।
0: नहीं, क्योंकि बीजेपी की होप ये है कि सिखों में नाराजगी थोड़ी कम हो गई है, हिंदू समाज उनके साथ है, और अगर उनका
1: ये ड्राइंग रूम में बैठ के बातें नहीं होती भाई साहब, गाँव में चलना, कभी गाँव में चल के पूछना लोगों को क्या हाल है, ठीक है ना, और पंजाब के लोग किस बात की तारीफ कर रहे हैं, किसको चाहते हैं, ठीक है ना, ये कांग्रेस में 6 मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, उनके वॉलंटियर काम है, मुख्यमंत्री ज़्यादा हैं, अंधेरे में ईंट मारो कांग्रेस के मुख्यमंत्री को लगती है जाके, ठीक है ना, उनका कांग्रेस का तो सीधा साहब है, रंधावा की भाजपा से नहीं बनती, भाजपा की जाखड़ से नहीं बनती, ठीक है ना, नहीं जाखड़ तो चलो ये है नहीं, रंधावा की भाजपा से नहीं बनती, भाजपा की चन्नी से नहीं बनती, चन्नी की नवजोत सिद्धू से नहीं बनती, नवजोत सिद्धू की किसी से भी नहीं बनती, वो तो कटाक पटाक वो तो ही चल रहा है काम, इनका है नहीं कुछ।
0: सिद्धू की कमेंट्री ज्यादा स्ट्रांग है या भगवंत मान की?
1: क्या
0: सिद्धू की कमेंट्री और कॉमेडी ज्यादा स्ट्रांग है या भगवंत मान की?
1: नहीं भगवंत मान, मैं कब कह रहा हूँ मैं कॉमेडी करता हूँ, मैं तो पॉलिटिकल स्टायर करता हूँ, व्यंग करता हूँ, ठीक है ना, सच कई बार चीजों को बताने का तरीका कोई और होता है, ठीक है ना, तो मेरे तरीके को लोग पसंद करते हैं, मैं क्यों फिर बदलूं उस तरीके को, मेरे से लोग उम्मीद करते हैं कैसे बोलो, और जो भी मैं बोलता हूं उसमें कोई ना कोई बात होती है, कोई ना कोई काम हो, देखो
0: नहीं पर जब सरकार के बाहर हो तब सटायर में ज्यादा मजा आता है, सरकार के अंदर रह के तो सटायर करना मुश्किल हो जाता है ना।
1: नहीं क्यों, मैं कर तो रहा हूँ अभी, कर रहा हूँ।
0: नहीं नहीं, आप कर रहे हो बाकियों पर, सरकार के अंदर रहते हुए अपने काम को एक्सप्लेन करते वक्त तो सटायर करना मुश्किल हो जाता है।
1: नहीं नहीं, मैं काम कर रहा हूँ नाल, जदों मेरे मेरे पे कोई वो करते हैं कोई, वो असल में ना वो मेरी पिच पे आके खेलने लगते हैं,
0: हाँ हाँ,
1: कॉमेडी उनको करनी नहीं आती, वो इस चक्कर में कुछ ना कुछ और बोल जाते हैं, गलती
0: इसीलिए तो मैंने जवाब ही नहीं दिया, मैंने बोला इनको जो बोलना है।

0: बोलने दो, इनसे भिड़ना तो बड़ा खतरनाक है।
1: आप बचाव हो गया आपका,
0: महंगा ही पड़ेगा, छोड़ दो इनको, मारने दो सिक्सर, बोलो वाह वाह वेल डन, छोड़ दो भाई।
1: लेकिन मैं एक पूछना चाहता हूँ, चलो उन्होंने सवाल पूछे, आप ऑडियंस को पूछना चाहता हूँ, चाहे वो टीवी पे देख रहे हैं चाहे आप लाइव में, आपको आज वाली इंटरव्यू में कुछ तो अलग से लगाना, कुछ तो बात कुछ अलग से हो रही है ना, कि नहीं तो सवाल
0: आप अपने सवाल आप को पहले फिक्स होते हैं, मुझे मार्क दे रहे हो,
1: नहीं नहीं नहीं तो क्या होता है कि सवाल भी फिक्स होते हैं, वही फॉर्मल सा सवाल, फॉर्मल सा जवाब, बोर हो जाते हैं सब लोग। लेकिन अब हमारे में केमिस्ट्री हमारी ऐसी है कि जो इन्होंने पूछा मैं उसके दो दो तीन तीन जवाब दिए, इन्होंने भी काउंटर किया, मुझे भी अच्छा लगा कि कोई सवाल ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने पहले मुझे दो दिन पहले भेज दिया हो फिर मैं उसकी प्रिपरेशन, स्पॉन्टेनियस जो बात दिल से निकलती है वो असर।
0: सवाल तो ना इन्होंने पूछे ना हमने भेजे ना हम भेजते हैं, इनमें से किसी ने पूछे भी नहीं, और ऐसे सवाल अगर पूछते पहले बता दिए तो क्या पता आते भी नहीं, तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, तो इन्होंने सारे सवालों के जवाब बड़े अच्छे से दिए। कुछ सवाल मैं अपने सहयोगी से ले लेता हूँ, पद्मजा जोशी हमारी मैनेजिंग एडिटर, सवाल लेंगी पद्मजा।
2: आपका ये ईवीएम से जो झगड़ा है कब खत्म होगा? अब उन्होंने उसी ईवीएम ने आपको पंजाब में जिताया, दिल्ली में बार बार जिताया, गुजरात में आपके एमएलए हैं, गोवा में आपके एमएलए हैं, और तो और छोड़िए कश्मीर में भी एक एमएलए आपका आ गया है उसी ईवीएम से चुन के, उसी कश्मीर जहां उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई डोंट थिंक ईवीएम में कोई खराबी है, किसी के पास प्रूफ है तो दिखा ले। वही ईवीएम आपको राज्य दर राज्य जिताता है, पर फिर आप कहते हैं कि ईवीएम की फिक्सिंग करके बीजेपी जीत।
1: देखो पता क्या है, पूरे देश में ईवीएम पर कई पार्टियों के सवाल हैं, पार्टियों को शक है, तो इलेक्शन कमीशन को ये बात क्लियर कर देनी चाहिए सभी को बुलाकर। एसआईआर पे शक है कि जी इतने जो नकली वोट हैं वो बनाए जा रहे हैं, असली वोट काटे जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एक विंग क्यों बन जाता है? इलेक्शन कमीशन प्रो बीजेपी क्यों हो जाता है? नहीं जी तो ऐसे होगा, नहीं जी तो हम तो ऐसे, तो उससे शक हो जाता है। फिर अगर बीजेपी को कोई डाउट ही नहीं है, जब भी ईवीएम पर कोई सवाल कोई पैदा होता है तो बीजेपी ईवीएम के पक्ष में क्यों आ जाती है? वो कहे कि हाँ जी चेक करा लो, हाँ जी हमारे सामने चेक करवा लो, हम हमारे पास तो इतना बड़ा नेता है जिसके नाम से हम जा जिसकी लहर से हम जीत जाते हैं। इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन को ये कहता हूँ कि वो उन पर भी उनके काम पर भी शक हो गया है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तो पहले ही थे, अब जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन पर भी शक हो गया है। तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी अगर बचानी है तो उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा सभी पार्टियों को, अकेले हम नहीं, उसमें और भी छोटी छोटी पार्टियाँ हैं जो शक करती हैं कि हमें इतने वोट तो यहाँ पढ़ने चाहिए थे, हमारा तो एक वोट भी नहीं निकला, कम से कम एजेंट ने तो वोट डाला होगा ना। तो इसलिए अगर ये कोई शक है तो इसको क्लियर करना चाहिए।
0: ये हमारी सहयोगी हैं रीत कौर साहनी, ये आज सुबह ऑफिस में थी डेस्क पे, उन्होंने बोला कि मुझे चंडीगढ़ जाना है, मुझे सवाल पूछना है, पंजाब से ही आती हूँ, मुझे जाना है। वो अपना ही इंतजाम करके अपनी गाड़ी में पता नहीं कैसे आई, ऑफिस छोड़ के यहाँ पे आ गई। पूछो रीत अपना सवाल।
1: जी
0: नहीं, माइक इज नॉट ऑन,
1: माइक ऑन कर,
0: ऑन ही था माइक,
1: शायद आगे आके बोलोगे तो
0: तुझी माइक भेज दो भाई,
1: आगे आके बोल के देखो ना शायद सिग्नल। हाँ ये माइक दे दो,
0: ये माइक है
1: राहुल, एक माइक है।
3: हेलो आखिरा सिग्नल माइक था। सत श्री अकाल सर, मेरा नाम रीत कौर सानी है, तो मैं तुम्हें ये पूछना चाहती थी कि जे थोड़े पहले भी सहयोगी आए थे, हिंदी में पूछती हूँ, कि उन्होंने कहा था कि ड्रग्स का बहुत प्रॉब्लम है पंजाब में, और ड्रग्स में 9 लाख जो कि हमारे ड्रग एडिक्ट्स हैं जो कि करंटली पंजाब में, आपकी गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है ये, उन्होंने बोला है, उस पर सिर्फ हमारे पास 6,000 बेड्स हैं। आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेट है? आप देखो कि 80% रिलैप्स रेट भी है इसमें, तो जो जो आपका प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन बहुत डिसप्रोपोर्शनेट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पंजाब जो कि बॉर्डर स्टेट है, जिसमें आप कह भी रहे थे कि है ऐसे रिंग्स, हैं ऐसे माफिया जो कि आप टैकल कर रहे हैं।
1: देखो जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है ना, ड्रग्स का पूछा ना आपने,
3: जी
1: ड्रग्स की प्रॉब्लम है, हमारे ड्रोन आते हैं राहुल जी, हमारा 532 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ अटैच करता है, तो पहले तो तार तो लगी हुई है लेकिन अब वो ड्रोन इस्तेमाल करने लगे, तो हमने एंटी ड्रोन सिस्टम अपना लगाया है, लेकिन हम HM साहब से बात होती है जो होम मिनिस्ट्री से या विदेश मंत्रालय से, तो मिलके काम करते हैं, हमारी 30% पुलिस हमारी।
3: जी सर, मेरा सवाल है जो रिहैबिलिटेशन एंड ड्रग एडिक्ट्स की, जैसे ड्रग विडोज भी होती हैं वो औरतें जो अपने हस्बैंड्स को,
1: आपकी समझ नहीं आ रही यहाँ पे क्या, आप मुझे समझ नहीं आ रहा आप, क्योंकि स्पीकर नहीं, रिहैब सेंटर्स का क्या,
3: जो आपका रिहैब सेंटर्स है जिसमें बेड्स होते हैं उसमें आपके पास करंटली

0: 6,000 बेड्स हैं और जो आपके ड्रग एडिक्स के पेशेंट्स हैं वो तकरीबन 9 लाख हैं, तो जो उनका ट्रीटमेंट है वो थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं है?
1: हाँ, जो रिहैब सेंटर हैं उनमें हमारे पास जितने मैक्सिमम बेड हैं हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको, पहले तो रिहैब सेंटर ना टॉर्चर सेंटर बन गए थे
0: जी,
1: उन वहाँ पे टॉर्चर भी करते थे जो प्राइवेट थे, उन पर भी हमने कंट्रोल किया है, अब उनको हम टेक ओवर करने लगे हैं, टेक ओवर भी कर रहे हैं। बाकी अभी हमारे पास 50 लड़के ऐसे तैयार हुए हैं जो खुद ड्रग्स में थे और वो काउंसलिंग करेंगे बच्चों की, नए बच्चों की, क्योंकि वो ज़्यादा बता सकते हैं कि हमने क्या क्या झेला है ड्रग्स में आके। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उनको रिहैब सेंटर में कम से कम लेके जाए, वो अगर घर पे रहें, दवाई उनकी चलती रहे और वो समाज में रहकर ही मतलब अपने आप को ठीक करें, काउंसलिंग हो जाए उनकी, ना कि वो एक जेल टाइप या कोई, उन कई बार झगड़े भी हो जाते हैं वहाँ पे, आपस में लड़ाई हो जाती है। तो कोशिश हम यही कर रहे हैं कि इनको कम करना है, अब ज़्यादा और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पेशेंट हैं उनको हम अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी हमने रिहैब सेंटर के
0: सर, एक और सवाल से, क्योंकि मैं
1: हाँ 14,000 है हमारे पास। थैंक यू।
2: मान साहब, एक सवाल है मेरा आपसे। हाल ही में आईडी ब्लास्ट होता है, एक आईडी ब्लास्ट होता है अमृतसर में, दूसरा होता है जलंधर में। डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि पाकिस्तान मुलव्वज़ है इसमें, उनका हाथ है, लेकिन आप उसी दिन बयान देते हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं, बीजेपी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं और इलेक्शन के साथ कनेक्ट करते हैं। ऐसा क्या रिश्ता कि पाकिस्तान
1: देखो को क्लीन चिट बीजेपी जहां भी इलेक्शन लड़ने जाती है उनका सबसे पहली निशानी यही है कि पहले वहां पे कोई ना कोई हिंसा कराओ, या दो समुदाय को लड़ाओ, या फिर बम चलाओ, गोलियां चलवाओ। क्योंकि जैसे ही बंगाल में इलेक्शन ख़त्म हुई, बंगाल में इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी का बयान, सबसे पहला बयान यही आया, बंगाल में सरकार हमारी है, अब पंजाब की बारी है। तो इससे तो यही शक होता है कि जो बंगाल में करके आए हैं, मणिपुर में करके आए हैं, बिहार में करके आए हैं, वही यहाँ करेंगे। तो उनको कैसे पता चल गया पाकिस्तान? उन्होंने भी एक मिनट में पाकिस्तान बोल दिया, हर बात वो पाकिस्तान पे, हर बात पेट्रोल हमारे बढ़ाते हैं, टमाटर के रेट जो मेन स्ट्रीम मीडिया टमाटर के रेट पाकिस्तान के बता रहा होता है, हमने क्या लेना पाकिस्तान में टमाटर क्या भाव बिकते हैं, इससे हमारा क्या लेना देना, हमारे बताओ जी हमारे रेट कब कम होंगे। तो इसलिए बीजेपी का ये पहले से रिकॉर्ड है कि दंगे करवा के उसमें से गुजरात से चला आ रहा है, ये दंगे करवा के उसके बाद एक पोलराइजेशन करते हैं। पंजाब की धरती फर्टाइल है, हर किस्म का बीज उग जाता है, जहाँ नफरत का बीज बिल्कुल नहीं उगता। बीजेपी ये गलत फहमी अपनी छोड़ दें।
3: मान साहब नमस्ते, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप सरकार बना रहे हैं, अगले चुनाव में आप जीत कर आ रहे हैं, लेकिन मैं इसके साथ में ये सवाल एक पर्सपेक्टिव के साथ, एक इमेज के साथ जोड़ना चाहती हूँ। मुझे रामलीला मैदान की वो तस्वीर याद आती है जहाँ पर सोनिया गांधी और सुनीता केजरीवाल साथ साथ बैठे थे, इंडिया अलायंस की शक्ति का वो प्रदर्शन था बीजेपी के अगेंस्ट। इंडिया अलायंस का आज का सच क्या है, और ख़ासकर तब अगर मैं ये सवाल आपसे इस सूरत में पूछूं, फ़र्ज़ कीजिए अगर आप पंजाब में चुनाव हार जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व का संकट हो जाएगा, और ऐसे में इंडिया अलायंस क्या आपके लिए भी ज़रूरत नहीं, जब आप यहाँ बैठकर कांग्रेस को तमाम क्रिटिसिज्म करते हैं?
1: इंडिया अलायंस में हम रहे हैं, लेकिन हमें मतलब हम या तो हम नहीं फिट बैठे या वो नहीं फिट बैठे, तो अब हम नेशनल पार्टी अलग से, अपना हमारा एजेंडा, हमारी विचारधारा और है, उनका शायद काम करने का तरीका और है, वो उनको मुबारक हो। लेकिन दूसरी बात है कि आप कहेंगे अगर पंजाब हार गए, अगर तो फिर अगर होता है, लेकिन पंजाब में जितने हमने काम किए हैं, जितना पंजाब से हर रोज़ हमें फीडबैक आता है, पंजाब के लोग बहुत खुश हैं। पंजाब के लोग ये कहते हैं कि पहली बार हुआ है कि हम ये झूठे पर्चे थाने में, या ये वो जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी पुलिस की, इधर इधर ये कर दिया वो कर दिया, उससे हमें छुटकारा मिल गया, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल रही है, हमें अच्छा इलाज मिल रहा है, और बिजली पानी फ्री है। पंजाबी जो हैं वो मतलब मौजें कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा। और पंजाब ने पहला हरा रंग का पत्ता जब पूरे देश में पार्टी लड़ी, 4 MP जिनमें मैं भी था, 4 MP 2014 में, उसके बाद 20 हमारे आए विपक्ष में, पहली बार आए 17 में, 1 MP जब फिर भी पार्टी इधर उधर थोड़ा बिखर गई थी, तो संगरूर से फिर मैं जीता अकेला, उसके बाद 22 में बड़ा मार्जिन दिया, तो पंजाब जो है वो हमारी धरती गुरुओं पीरों फकीरों शायरों की धरती है और नए इनकलाब को नई चीज़ को जल्दी अडॉप्ट करते हैं। हमें उम्मीद है कि पंजाबी हमारा दिल नहीं तोड़ेंगे।
4: एक सवाल लेंगे मुनीश देवगन से। मुनीश देवगन अमृतसर से आते हैं, ये बड़े एक साहब माइक की तरफ भाग रहे एकदम स्पीड से कि कुछ भी हो जाए मैंने तो पूछना ही पूछना है।
2: सर आजकल एक वीडियो बड़ा वायरल होता है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट होवे अमृतसर जिला, एक वीडियो वायरल होता है जिस विच औरतों की चैन खिंची जा रही है, वालियाँ खिंची जा रही हैं। असी चाहते दूजा वीडियो भी वायरल होवे जिस उन्होंने गिट्टे भन्ने जा रहे हैं, जिस पुलिस ने थोड़ा जिहा टाइट किया है तुसीं कि वो दूजे सामने आवे जिस वो जनानी को जाके माफ़ी मंगे कि भैन तेरी मैं चैन खिंची सी, तो ये उत्ते की काम हो रहा है?
1: यदा जो जी स्नैचिंग है ना ये भी ड्रग न रिलेटिड ही है। उन्होंने ना 200-300 रुपया शाम को चाहिए, वो चाहे मोबाइल खोन चाहे स्नैचिंग कर। सो जो ड्रग तो असी काबू पा लिया तो बिच ये समस्या का हल बिच ही आऊगा ये, तो बड़ी जल्दी तुहानू इस तरह का देखने सुनने मिलेगा कि क्योंकि पंजाब पुलिस कैपेबल हैगी है सब कुछ करन दे। तो पंजाब पुलिस नाल असी इस गलों मिल के चल रहे हैं कि नाल BSF नाल भी सानू चलना पैंदा है। नाल पंजाब पुलिस कल्ले पंजाब दी पुलिस नहीं, देश दी पुलिस बन के बॉर्डर ते राखी करदी है। तुसी अमृतसर नू बिलोंग करदे हो तुहानू ज़्यादा पता है कि उधरों किन्ना कुछ साडे दरम्यान ISI वाले जां उत्थों दे जिहड़े शरारती अंसर ने वो करदे ने, पर असी अपने आप नू HM सेंटर नाल भी इस मामले च असी रिपोर्ट जिहड़ी एक दूजे नाल शेयर करदे रहिंदे हां कि पंजाब जिहड़ा क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया तो पंजाब ही है, पंजाब नंबर वन बनूगा तो देश नंबर वन बनूगा। जिस तरह पहला बोलदे आ मोहतरमा ने कहा सीगा कि पंजाब जिहड़ा हर पक्षों जदों भी कोई देश से संकट आया चाहे अनाज का चाहे आज़ादी का चाहे कोई भी संकट आया तो पंजाब एक तान से खड़ा।
4: खत्म करने से पहले आपने कोई पोइट्री करनी है, कोई शायरी करनी है, पोइट्री करनी है, कुछ समा बांधना है खत्म करने से पहले, लेकिन एक सवाल मैं गुरप्रीत चीना से लूंगा। आप सोच लो आपने क्या करना है, कुछ माहौल बनाना है खत्म करना। बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया थोड़ा।
5: मान साहब आपने असेंबली पोल्स की तो प्रेडिक्शन किया, अकाली दल को कितनी आएगी, कांग्रेस को कितनी आएगी, BJP को कितनी आएगी। कल सेमीफाइनल होने वाला है क्योंकि लोकल बॉडी पोल्स है और बैलेट को लेके लगातार हाई कोर्ट में भी ये मामला गया था, तो कल की क्या प्रेडिक्शन लगती है कि जो आम आदमी
1: पार्टी एक तो सेमीफाइनल आप पता नहीं कितने करते हो। इससे पहले सरपंची की इलेक्शन हुई वो भी सेमीफाइनल था, उससे पहले नगर निगम की हुई वो भी सेमीफाइनल था, फिर 4-5 हमारी बाई इलेक्शन हुई वो भी सेमीफाइनल था। तो कल वाली जो नगर कौंसिल की इलेक्शन हो रही है उसमें आम आदमी पार्टी जो है वो क्लीन स्वीप कर रही है, तो आप इसको सेमीफाइनल कह लो फाइनल कह लो मुझे नहीं पता, क्योंकि 34 लाख वोटर जो हैं वो कल वोट डालेंगे लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन में। और पंजाब कल आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जो मैंने लिख के दिया कि उसकी तरफ ही जा रहा है वहाँ।
4: उसमें एक आपके कैंडिडेट हैं वो कहते हैं कि अगर आपको नहीं दिया तो हम मतलब पूरा बूथ बंद कर देंगे, मतलब ऐसा उन्होंने बयान दिया कि हम किसी को वोट, मतलब लोगों को लगा ये क्या धमका रहे हैं लोगों को।
1: बैलेट से इलेक्शन हो रही है, किसी को हमने इलेक्शन का पर्चा भरने से नहीं रोका कोई, ये तो सिर्फ ऐसा कहते देखो जी हमें रोक रहे हैं, हार को मतलब अपनी हार को बुखलाहट, हार की बुखलाहट होती है उसमें कहते हैं।
4: अच्छा मान साहब
1: कोई गुंडागर्दी करने तो आए ही नहीं।
4: ख़त्म करने से पहले अगर वो जो कॉमेडियन भगवंत मान है जो पूरे रूरल पंजाब में हिट हुआ, अगर वो इस सरकार को देख रहा है तो सरकार पे कॉमेडी क्या करेगा वो
1: सरकार को?
4: हाँ अगर कॉमेडियन भगवंत मान चीफ मिनिस्टर भगवंत मान पे कुछ कहने वाला हो या करने वाला हो क्या कहेगा?
1: जे मैं देखा अपने बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा तेरी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले।
4: बहुत खूब समा आपने खूब बांधा। अब आपके काम पर पंजाब की जनता का क्या एक्चुअल फाइनल का रिपोर्ट कार्ड है वो 2027 में पता चलेगा, लेकिन हमारी उम्मीद ये है कि आप हमें और मौका देंगे आपके पास आने का, इंटरव्यू करने का।
1: एनी टाइम इलेक्शन के समय भी मिलेंगे। हाँ उसमें वो आप गाड़ी में बैठ के करते हो ना इंटरव्यू, एक वो करेंगे
4: वॉक तो टॉक करेंगे आपसे,
1: वॉक
4: मजा आएगा। नहीं पर एक बार फिर से भी आएंगे, एक बार सबमिट करेंगे।
1: हाँ मर्जी हो, पंजाब आपका है। पंजाब तो हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना हुआ है मेज़बान, पंजाबी तो जहाँ दुनिया
2: सर
1: कोई चांद पर भी अगर चले जाओगे तो पंजाबी एक आध मिल ही जाएगा आपको, तो पंजाबी तो पूरी दुनिया में मिलते हैं।
4: हम फिर से आएंगे पंजाब इलेक्शन से पहले, वॉक द टॉक भी करेंगे और पंजाब में एक बड़ा समिट भी करेंगे, लेकिन आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। एक भी बार नहीं कहा ये मत पूछना वो मत पूछना, और जैसे सवाल आपने देखे देखा कि हर तरह का सवाल पूछा भी गया जिसका आपने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया भगवंत मान जी।